समवेत स्वर में अभी आपने सुनाई मातृवंदना, और अब लीजिए सुनिए किशोर और रंजना ठाकुर की आवाज़ों में ये भजन।

0: श्रोताओं, महेंद्रपाल सिंह व साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें बकरी पालन के संदर्भ में। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी का दूध बहुत पाचक होता है और बहुत ही गुणकारी भी होता है। संसार में भारत का बकरियों की संख्या के हिसाब से पहला स्थान है। हमारे इन द्वीपों में भी बहुत सारी बकरियां हैं और किसान भाई बकरी पालन करते हैं। किसान भाइयों, बकरियों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बकरियों की अच्छी नस्लों को पाला जाए। एक गाय या भैंस को पालने में जितना खर्च होता है, उतने में 8 से 10 बकरियां पाली जा सकती हैं। एक देशी गाय औसतन दूध उत्पादन जो करती है वो 350 से 500 लीटर प्रति ब्यान के दौरान करती है, जबकि एक बकरी का दुग्ध उत्पादन 65 से 80 लीटर होता है। साधारणतः कुछ नस्लें जैसे बारबरी और ब्लैक बंगाल जैसी जो बकरियां होती हैं, वो 12 से 15 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं और प्रत्येक बार में औसतन 2 बच्चे जन्मती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बकरियों की संख्या में जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से होती है और इस तरह किसान भाइयों को काफ़ी लाभ हो सकता है। बकरियों की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे इन द्वीपों में मुख्यतः ब्लैक बंगाल जाति की बकरियों को ही देखा जा सकता है। ब्लैक बंगाल एक बहुउद्देशीय बकरी है। ये बकरी उष्णकटिबंधीय जलवायु में आसानी से पाली जा सकती है। हमारे इन द्वीपों में बकरियों को पालने में किसान भाई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यानी वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें वांछित लाभ भी नहीं मिल पाता। बकरियों के लिए साफ़ सुथरा और हवादार घर का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। 2 बकरियों के लिए 150 सेंटीमीटर लंबी व 120 सेंटीमीटर चौड़ी जगह का प्रावधान होना चाहिए। बकरियों के लिए जो घर हम बनाते हैं उसकी ऊंचाई 2.4 मीटर तक होनी चाहिए। घर कच्चा भी बना सकते हैं या फिर लकड़ी के इस्तेमाल से भी घरों का निर्माण किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश बकरियों के लिए बनाए गए घर में अवश्य पहुंचना चाहिए। बकरियों के लिए जो घर हम बनाते हैं उसकी प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए और समय समय पर कीटाणुनाशक घोल से इसकी धुलाई होनी चाहिए ताकि इसे पूरी तरह से कीटाणु रहित हम रख पाएं। बकरियों की सेहत को बनाए रखने और अधिक दूध लेने के लिए आवश्यक है कि उन्हें पौष्टिक चारा खिलाएं। औसतन एक बकरी के लिए 3 से 4 किलोग्राम हरा चारा और 300 ग्राम दाने का प्रबंध होना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में बकरियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ हों तथा दुग्ध उत्पादन अधिक मिले। बकरियों में भी कुछ एक बीमारियों का प्रकोप होता है जिसके लिए किसान भाइयों को सजग रहना चाहिए। मुख्यतः निमोनिया, थनैला रोग, अफरा, दस्त, पेट में कृमि आदि की जो शिकायत है वो बकरियों में देखी गई है। जैसे ही बकरी सुस्त व बीमार दिखे तो उसे तुरंत आप पशु चिकित्सालय में ले जाएं और पशु चिकित्सक से उचित सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करें। वैसे तो बकरी पालन काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आपको कुछ एक बातों पर जिसका कि जिक्र अभी हमने किया इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप संकर नस्ल की बकरियों को पालेंगे तो इससे और भी ज़्यादा लाभ आप कमा पाएंगे।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। विषय था बकरी पालन से लाभ।

कुछ ही पलों के बाद यानी सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रंगत आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और यह जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अब सुनिए कल होने वाले यात्राओं के बारे में। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल यानी शनिवार 26 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान के रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी बंडोर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी रविवार 27 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी वंडोर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा और ये जलयान अगले दिन यानी रविवार 27 तारीख को सुबह 5:30 पर

0: स्वराज्यदीप से छूटकर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी भारत सीमा कल 26 तारीख को रात 8 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी रविवार 27 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैम्बल बे रविवार 27 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान उसी रोज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी शोर नहीं करता, उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, कभी उसे अकेले चलना पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है।

दोस्तों, ये जीत हमारी मेहनत की है, ये जीत हमारे विश्वास की है, ये जीत उन सभी लोगों की है जिन्होंने हम पर भरोसा किया। क्योंकि आज सिर्फ हम जीते नहीं हैं, बल्कि आज हमारे सपने जीते हैं, आज हमारी मेहनत जीती है, आज हमारा विश्वास जीता है। दोस्तों, जब बात हो दिल की, कैसे कोई जीते किसी का दिल, ये प्रश्न हर किसी के मन में कभी ना कभी आया ही होगा, इस गीत की तरह।

दोस्तों, जीत सिर्फ एक परिणाम नहीं होती, जीत उन अनगिनत कोशिशों की कहानी होती है जो किसी ने दुनिया से छिपकर की होती है। आज का ये जीवन उन सपनों की जीत है जिन्हें हमने अपनी आंखों में सजाया था, उन मेहनतों की जीत है जिन्होंने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और उन लोगों की जीत है जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। कभी रास्ते कठिन थे, कभी हालात हमारे खिलाफ थे, लेकिन हमने हार मानना सीखा ही नहीं। हम गिरे जरूर, मगर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। दोस्तों, जीवन के इस सफर में कभी हार

दोस्तों, जिंदगी की कठिन राह पे चलते रहिए, कठिनाइयों का सामना करते रहिए, अपनी जीत की खुशी मनाते रहिए और हार से सबक लेते रहिए। इसी दुआ के साथ अपनी दोस्त गीता को दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। विषय था जीत और प्रस्तुत कर रही थी गीता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 372वीं कड़ी। कलाकार सुरेश वाडकर।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्रीराम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान के 372वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा की 12वीं कड़ी।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। श्रोताओं, फिनिक्स फॉर्म में गेहूं हाथ चक्की में पीसा जाता था। गांधी जी ने एक विशेष तंदूर बनाया जिसमें सबके लिए रोटी पकाई जाती थी। उनके मित्र कालनबाज को चमड़े से चप्पलें बनानी आती थी। गांधी जी ने चमड़े की चीजें बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ जूते और चप्पल के लिए केवल मरे हुए पशुओं की खाल का ही उपयोग किया जाता था। चमड़ा शिल्प में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। गांधी जी ने स्वयं भी चमड़े की चप्पलें बनानी सीखी। उन्होंने एक जोड़ी चप्पल बनाई और अपने मित्र जनरल स्मर्ट्स को भेंट में दी। जनरल स्मर्ट्स ने चप्पलें प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। गांधी जी से मिले हुए इस बहुमूल्य उपहार को उन्होंने वर्षों तक पहना। अब गांधी जी कपड़े धोने में भी विशेषज्ञ बन गए, साथ ही साथ वे कपड़े सीने में भी निपुण हो गए। फर्म में बच्चों का एक स्कूल भी चलने लगा। ट्रांसवाल में रहने वाले भारतीयों का जीवन भी सुखमय हो गया, वे संतुष्ट थे। गांधी जी ने गोखले को दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया। गोखले ने निमंत्रण स्वीकार किया। जब गोखले वहां आए तो भारतीयों ने रेलवे स्टेशन सजाया और वहां खूब रोशनी की और पूरे जोश से उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में भोज दिए। विदा लेते समय गोखले ने गांधी जी से कहा, अब यहाँ की स्थिति ठीक हो गई है, अब तुम्हें भारत लौट आना चाहिए। इसके बाद गोखले इंग्लैंड चले गए। कुछ समय बाद गांधी जी को गोखले का एक पत्र मिला कि वह इंग्लैंड होते हुए ही भारत लौटे। गांधी जी परिवार सहित इंग्लैंड चल दिए। उनका जहाज इंग्लैंड पहुंचा भी ना था कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और इंग्लैंड परेशानी में पड़ गया। गांधी जी ने तुरंत कस्तूरबाई और बच्चों को भारत भेज दिया और स्वयं इंग्लैंड में ही रुक गए। वहां इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों से मिले और उनसे कहा कि इस संकट काल में जरूरत के समय वे सब इंग्लैंड की सहायता करें। उन्होंने अपने मित्रों के साथ भारत की स्वाधीनता के प्रश्न पर भी विचार किया। यही गांधी जी प्लूरोसिस से बीमार हो गए। स्वस्थ होते ही वे भारत के लिए चल दिए। गांधी जी 12 वर्ष बाद अपने देश लौट रहे थे। जनवरी का महीना था। भारत की ताजी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। जहाज बंबई बंदरगाह पर लग गया। वे डेक पर आ गए। उन्होंने देखा कि असंख्य भारतवासियों की भीड़ किनारे पर खड़ी है और नारे लगा रही है, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। उनके हाथ में गुलाब और गेंदे की मालाएं थीं। वे सब उनका स्वागत करने के लिए आए थे। जहाज से उतरते ही गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। बम्बई में मित्रों से भेंट करके गांधी जी गोखले से मिलने पूना गए। उन्होंने भारत में भी दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म की तरह एक फॉर्म बनाने की बात कही। गोखले को उनका विचार अच्छा लगा, पर उन्होंने सलाह दी, सबसे पहले अपने देश को समझो, उसके बाद ही कोई नई योजना शुरू करो। गांधी जी राजकोट आ गए। उन्होंने कस्तूरबाई से अपनी भारत की खोज यात्रा के विषय में बात की। कस्तूरबाई भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। दोनों ने अपनी जरूरत भर का सामान बांधा और अपने एक अंग्रेज मित्र के साथ एक बार फिर भारत यात्रा पर चल दिए। वे सब रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। गांधी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने शांति निकेतन

भी गए। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रभावित हुए। गांधी जी ने रविंद्रनाथ को गायक कवि की उपाधि दी। गांधी जी को देखकर रविंद्रनाथ को लगा मानो कोई संत साधु आ गया हो। वे गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारने लगे। तभी से गांधी जी का नाम महात्मा पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी को इतनी लगन से सारे काम करते देखकर चकित रह गए। गांधी जी ने शांति निकेतन में रहने वालों को रसोई घर में काम करना, शौचालय की सफाई, कूड़ा करकट साफ करने की ठीक व्यवस्था और सादा जीवन बिताना सिखाया। गांधी जी शांति निकेतन में आनंद से समय बिता रहे थे कि तभी उन्हें पुणे से एक तार मिला। गोखले का निधन हो गया। गांधी जी धक से रह गए। वे पहली गाड़ी पकड़कर पुणे चले गए। गोखले की मृत्यु के शोक में उन्होंने एक वर्ष तक पैरों में चप्पल नहीं पहनी और नंगे पैर चले। अब गांधी जी को भारत के बारे में पूरी जानकारी थी। वे जान गए कि भारत गांव में बसता है। गांव वाले गरीब और अनपढ़ थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत के गरीबों की दशा सुधारने के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए भी लड़ने का निश्चय किया। गांधी जी ने गुजरात में जुल्हाओं के गांव कोचरब में आश्रम स्थापित किया और अपने आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम रखा। फिनिक्स फॉर्म के 18 स्वयंसेवक भी उनके साथ काम करने आ गए। उनके भारतीय मित्रों ने अहमदाबाद नगर के पास साबरमती नदी के किनारे आश्रम के लिए एक स्थायी स्थान का प्रबंध कर दिया। गांधी जी अपने परिवार और मित्रों के साथ सत्याग्रह आश्रम से साबरमती आश्रम आ गए। साबरमती आश्रम में सब ने मिलकर मिट्टी के मकान बनाए। यहाँ एक मुख्य कुटिया थी, इसमें आंगन भी था। यहाँ एक कोने में गांधी जी का छोटा सा कमरा था। कमरे में एक चटाई बिछी थी और लिखने के लिए नीचा डेस्क था। एक चरखा भी रखा था। बराबर वाले कमरे में कस्तूरबाई रहती थी। इस घर में एक रसोई घर और मेहमान कमरा भी था। मुख्य कुटिया के चारों तरफ खुले मैदान में बहुत सारे पेड़ थे। सभी लोग जमीन पर चटाइयां बिछाकर सोते थे। सब लोग सादे कपड़े पहनते थे, शाकाहारी भोजन खाते थे। यहाँ आश्रम का जीवन एक बड़े संयुक्त परिवार के बीच रहने की तरह था। गांधी जी आश्रम के मुखिया थे। आश्रम निवासी उन्हें नए नाम बापू यानी कि पिताजी कहने लगे और कस्तूरबाई को बा यानी कि माँ कहने लगे। गांधी जी ने गरीबों की तरह रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कमीज पहनना छोड़ दिया, केवल धोती पहनने लगे। आश्रम के निवासी उनके निर्देश अनुसार काम करते। सब ने पेड़ लगाए। वे सब गायों की देखरेख करते, चरखा चलाते, सूत काते, कपड़ा बुनते, किताबें पढ़ते और पास के गांवों में जाकर काम करते। अगर आश्रम का कोई सदस्य अपना काम न करता तो बापू अपने को दोषी मानते और स्वयं उपवास कर डालते। प्रतिदिन सुबह और शाम वे प्रार्थना सभा करते। तो श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर हमारी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

समवेत स्वर में अभी आपने सुना ये मातृ वंदना। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवा और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत गुड मॉर्निंग अंडमान 7:30 पर, जिसके अंतर्गत कानून की बात कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे एडवोकेट बरसा दास से ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा साइबर अपराध। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप रानी मुखर्जी को सुन पाएंगे। 9:10 पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म गीतों का प्रसारण हम करेंगे 9:45 पर। दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग हम प्रसारित करेंगे सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा आप लोकगीत सुन पाएंगे। दोपहर 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 पर मलयालम में सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 1:10 पर पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के तहत पद्म भूषण अलका याग्निक को आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। देशगान प्रसारित की जाएगी 1:20 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद के गीत आपको सुनवाएंगे। 5:30 पर बांग्ला में नजरुल गीत प्रसारित की जाएगी। 6:00 कार्यक्रम का समय होगा शाम 6 बजे, जिसके तहत एनसी चौधरी से की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे। बातचीत का विषय होगा घर के पिछवाड़े पालने योग्य मुर्गियों की नस्लें। क्षेत्रीय समाचार एकांश के सौजन्य से प्रस्तुत समाचार तरंगनी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 6:55 पर। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवा श्रोताओं के लिए फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स 7:30 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 8 बजे। 8:30 पर

रोजगार समाचार उसके बाद गौरवगान प्रसारित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों का दैनिक रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7 बजे हैं। जन सूचनाएं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत कानून की बात कार्यक्रम में आप एडवोकेट बरसा दास से ली गई भेंट वार्ता सुन पाएंगे। विषय होगा साइबर अपराध।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वादः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु सुत्वत दाढ्यकृत शिरश्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत। शरीर में तेल लगाने की प्रक्रिया को आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करने का परामर्श शास्त्रों में उपलब्ध है। यह शरीर एवं मांसपेशियों में होने वाले दर्द और थकावट को कम करता है, अच्छी नींद प्रदान करता है और आयु को बढ़ाने में भी सहायक है। विशेष रूप से सिर, कान और पैरों में नियमित रूप से अभ्यंग करना चाहिए। आयुर्वेद अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9-01-701 पर।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत
5: 102 या 112
4: नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते।
7: नेशनल हेल्थ मिशन अंडमान तथा निकोबार के द्वारा जारी।
8: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 10 बजे आकाशवाणी पर मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।

शासन ने आरसीएस उड़ान 6.0 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिनिक्स बे और बम्बूफ्लैट के बीच संचालित वाहन फेरी जलियान की सेवा को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है और झारखंड में आयोजित होने वाले नेशनल पार्टिसिपेशन कैंप के लिए साइकिल चालकों का चयन ट्रायल 27 सितंबर को होगा।

0: सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस 138वीं कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने कनेक्टिविटी को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आरसीएस उड़ान 6.0 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पहल सी प्लेन और छोटे फिक्स्ड विंग विमानों के माध्यम से द्वीपों के बीच किफ़ायती हवाई संपर्क को बढ़ावा देगी, जिससे पूरे द्वीप समूह में पर्यटन, व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को एक नई गति मिलेगी। रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार कमान की ओर से ANC हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर को सुबह 5 बजे 21 किलोमीटर दौड़ को कमांडर इन चीफ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ सुबह 5:30 बजे और 5 किलोमीटर की दौड़ सुबह 6 बजे आयोजित होगी। अंडमान निकोबार कमान की 25वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित ANC सिल्वर जुबली फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया। ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन में आयोजित टूर्नामेंट में कुल 10 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में अंडमान FC ने जीत हासिल कर विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि आर्मी ए उप विजेता रही। समापन समारोह में वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी मुख्य अतिथि, जबकि मुरलीकांत राजाराम पेटकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पद्मश्री और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एथलीट मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें समर्पण, दृढ़ता तथा खेल भावना के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सितंबर और अक्टूबर माह के दौरान ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत तिरसा में ये शिविर 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसी प्रकार चौरा में ये शिविर 3 से 5 अक्टूबर तक और कचाल में 7 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। विभाग ने सभी नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और शिविर के दौरान आधार से संबंधित कार्य करने की अपील की है। इन आधार शिविरों का संचालन मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। डिगलीपुर के रामकृष्ण ग्राम स्थित नवीनीकृत जिला परिषद सामुदायिक भवन का उद्घाटन हाल ही में मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष आर अलगर स्वामी ने किया। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कृष्णा चैतन्य और अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि इस सामुदायिक भवन से रामकृष्ण ग्राम और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ही सुन रहे हैं।
1: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलीघट लेकर आया है महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS, गर्भावस्था की देखभाल, गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं, प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें, अपने स्वास्थ्य को दें विशेषज्ञ देखभाल।

0: की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 8900914124. हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, अनन मार्ग रोड, जुंगली घाट, श्री विजयपुरम।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिनिक्स बे और बम्बोफ्लैट के बीच संचालित वाहन फेरी जलयान एमवी पिलोभाबी में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण जलयान की सेवा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। निदेशालय ने कहा कि खराबी को ठीक करने और इस मार्ग पर वाहन फेरी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में आयोजित होने वाले नेशनल पार्टिसिपेशन कैंप के लिए एलीट जूनियर और सब जूनियर श्रेणियों में साइकिल चालकों के चयन के लिए अंडमान निकोबार साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से 27 सितंबर को चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक साइकिल चालकों से कल तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना पंजीकरण जमा करने को कहा गया है। गूगल फॉर्म का लिंक साइकिलिंग एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स पर्यटन विभाग के सहयोग से विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में समुदाय केंद्रित गतिविधियां आयोजित कर रहा है। इसके तहत कल अंडमान क्लब में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। 27 सितंबर को अंडमान क्लब में सुबह 10 बजे से खुली चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। ये प्रतियोगिता का विषय अंडमान एवं निकोबार पर्यटन का एक गंतव्य रखा गया है। ऑटो ने छात्रों, कलाकारों, पर्यटन हितधारकों और आम जनता को दोनों गतिविधियों में भाग लेने का अनुरोध किया है। बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता और अंडमान लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता E&M के पदों के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का संशोधित सामान्य पाठ्यक्रम प्रशासन के पोर्टल पर आज दिन में 11 बजे से उपलब्ध रहेगा। समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के तहत और राज्य परियोजना अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ब्लॉक प्रोजेक्ट कार्यालय नानकौड़ी में कल राजकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमोटा में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशन, संचार और समान अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर छात्रों के लिए पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। उधर पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगत में भी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में सुदूर द्वीपों में निदान क्षमता को मजबूत करना एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन निदेशक डॉ. अपरूप दास के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और VRDL एनिम्स के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम में हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से दूरस्थ द्वीपों में नैदानिक और रेफरल क्षमता को मजबूत करने, संस्थानों में उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं के तर्कसंगत व कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और पूरे द्वीपों में इन सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रशासन ने RCS उड़ान 6.0 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिनिक्स बे और बम्बोफ्लैट के बीच संचालित वाहन फेरी जलयान की सेवा को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है और झारखंड में आयोजित होने वाले नेशनल पार्टिसिपेशन कैंप के लिए साइकिल चालकों का चयन ट्रायल 27 सितंबर को आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा वतन भारत केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव का प्रतीक है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सच्ची देशभक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देना आवश्यक है।

0: एक सच्चा देशभक्त अपने वतन की एकता, शांति और प्रगति के लिए हमेशा प्रयास करता है। वह जाति, भाषा, धर्म से उठकर सभी देशवासियों को अपना भाई बहन मानता है। हमारे वीर सैनिकों का साहस और बलिदान हमें अपने देश से प्रेम करना, उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना सिखाती है।
1: नफरत

दोस्तों, हमारा देश भारत विश्व में सबसे प्राचीन और महान देशों में एक है। भारत ने विज्ञान, शिक्षा, कृषि, खेल और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति की है और इसे प्रगतिशील बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: देश रागिनी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, आप अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती ही रहती है, तब भी सूरज रोज़ अपने समय पर उगता है।

और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। आज इसके तहत लीजिए सुनिए एडवोकेट बरसा दास से ली गई भेंट वार्ता। विषय है साइबर अपराध। इनसे भेंट कर रही है जयशीला।

0: कानून की बात कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, और बातचीत के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है एडवोकेट वर्षा दास को। वर्षा दास जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार मैम।
0: सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध होता क्या है?
1: साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो इंटरनेट, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्रोनोग्राफी या अश्लील सामग्री फैलाना।
0: अब जैसे आपने बहुत सारे तरीके बताए, आम नागरिक किन किन तरीकों से साइबर अपराध का शिकार होता है?
1: जी, आम नागरिक कई तरीके से साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, खासकर जब वे इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करते हैं, जैसे फिशिंग। इसमें नकली ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट भेजकर बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड आदि मांगा जाता है। उदाहरण के लिए, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत लॉगिन करें, जैसा मैसेज आपको भेजा जाएगा और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। दूसरे तरीका यह है कि ऑनलाइन ठगी, जिसे हम ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं, जिसमें OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस या नकली ई कॉमर्स साइट पर फर्जी सामान बेचने का झांसा। उदाहरण के लिए, सामान खरीदने के लिए पैसे मंगवाकर बाद में गायब हो जाना।
0: और ऐसे भी आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत चल रहा है।
1: जी, जैसे आजकल सब ऑनलाइन खरीदते हैं, तो वो लोग जैसे देख लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी लिंक आ जाती है कि आप खरीदिए सामान, बट जब वो क्लिक करते हैं, पैसा वो पेमेंट कर देते हैं, मगर वो सामान उन तक नहीं पहुंचती है।
0: तो ऐसे में जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, जो लोग हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी?
1: किसी को OTP शेयर ना करे, अनजान लिंक, कॉल या ईमेल से दूर रहे, ये आपके डाटा का दरवाजा खोल सकते हैं।
0: यदि कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसे नजदीकी पुलिस थाने में FIR करवानी चाहिए, या फिर साइबर सेल, जो अभी ऑनलाइन शिकायत चल रही है, उन पे जल्द से जल्द शिकायत करनी चाहिए। जब अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो 1930 पर कॉल करके कर सकते हैं।
0: और क्या ध्यान में रखे लोग, क्या क्या सावधानी बरते?
1: अगर हम लोग सावधानियों की बात करें तो काफी सारी बातें हैं, जैसे कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बैंक से आए मैसेज या कॉल पर कभी OTP शेयर ना करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सीमित रखें, कंप्यूटर और मोबाइल में

0: एंटीवायरस रखे, मजबूत पासवर्ड रखे, सार्वजनिक वाईफाई से सावधान रहे, सोशल मीडिया पर सावधानी बरते, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करे, फर्जी कॉल और लॉटरी से सावधान रहे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखे हमेशा अपने फ़ोन की, और बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी सिखाए, संदिग्ध गतिविधियाँ दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करे।
1: आपने जैसे एक बात की, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा शेयर ना करें,
0: जी
1: लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग बड़े धड़ल्ले से अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। ऐसे में आप हमारे जो युवा हैं उनको क्या कहेंगी?
0: मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ना करें,
1: जी
0: क्योंकि इससे आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। फिर वहीं से हमारी पर्सनल फोटोज़ वगैरह लेके दूसरे फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिससे
1: जी
0: हमारा ही नुकसान होता है। हमें बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है,
1: बराबर
0: ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, उससे मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ती है, बदनामी बढ़ती है, क्योंकि वो फोटो एडिटिंग करके आपकी फोटो आगे
1: जी
0: शेयर करना शुरू कर देते हैं।
1: कर देते
0: आजकल
1: हैं।
0: वही हो रहा है कि डे टू डे लाइफ, वो कब क्या कर रहे हैं वो सब शेयर कर रहे हैं, एक्चुअली उन्हें वो नहीं करना चाहिए। यही होती है साइबर क्राइम की फर्स्ट स्टेज, की लोग भूल जाते हैं कि
1: जी
0: मैं
1: जी
0: हम हमेशा शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए उन्हें।
1: जहां से ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वहीं से ये जो अपराध है
0: अपराध
1: वहां से
0: शुरू।
1: शुरू होता है।
0: जी जी
1: अब कानून की बात करते हैं, हमारे देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्या-क्या कानून हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
0: हमारे देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जिसमें से एक आती है IT Act 2000 एंड
1: जी
0: दूसरी है भारतीय न्याय संहिता
1: जी
0: 2023। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके आई है, और
1: जी
0: इसमें कड़े से कड़े प्रावधान मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गई है। इसमें डिजिटल और तकनीकी अपराधों को अधिक विस्तार से परिभाषित किया गया है। साइबर अपराध को एक संगठित अपराध माना गया है। अंडर सेक्शन 111 इसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहा जाता है, जैसे ऑनलाइन ठगी, फर्जी वेबसाइट, कॉल सेंटर, स्कैम, फेक प्रोफाइल हैकिंग इत्यादि। यदि ये अपराध किसी गैर कानूनी समूह द्वारा किए जाए तो इसे संगठित अपराध माना जाएगा, और इसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
1: जी
0: इसके अलावा झूठी अफवाहें फैलाना अब बड़ा अपराध है,
1: जी
0: अकॉर्डिंग टू सेक्शन 353। अगर कोई सोशल मीडिया या इंटरनेट पर झूठी भड़काऊ या अफवाह वाली पोस्ट करता है, जिसे दंगा, डर या हिंसा हो सकती है, तो यह अपराध माना जाएगा। तीसरी ये है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78। अगर कोई महिला को बार बार ऑनलाइन मैसेज फॉलो करना, अश्लील फोटो भेजना या सोशल मीडिया पर परेशान करना, तो यह अपराध है। पहली बार अपराध पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। चौथी पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कानूनी मान्यताएं दी गई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। अब व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट जैसे डिजिटल एविडेंस अदालत में मान्य होंगे। फिफ्थ ये है कि साइबर ठगी, फेक वेबसाइट और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड पर कड़ी सजा। हालांकि ये अपराध IT Act 2000 में आते हैं, लेकिन अब BNS में भी इन अपराधों को परोक्ष रूप से कवर किया गया है, जिससे एक मजबूत दंडात्मक ढांचा बनता है। छठी ये है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का प्रसारण। अब ऑनलाइन प्रॉन, चाइल्ड प्रोनोग्राफी और बिना अनुमति किसी की तस्वीर या वीडियो पोस्ट करना अब अपराध की श्रेणी में आती है। BNS 2023 ने साइबर अपराध को गंभीरता से लिया है। अब आम नागरिक को ऑनलाइन फ्रॉड, मानसिक उत्पीड़न या डिजिटल धोखेधड़ी से कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। यह नया कानून डिजिटल भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है।
1: वर्षा जी, जैसे कि आपने महिलाओं की बात की, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं साइबर अपराध की शिकार हो जाती हैं, लेकिन वो कई बार आगे आने से घबराती हैं कि उनका नाम ना खराब हो, तो वो शिकायत करने में भी डरती हैं। तो ऐसे में हमारी महिलाओं से आप क्या कहेंगी?
0: डरे नहीं, सामने आकर शिकायत करे। उनका नाम कभी ऊपर नहीं आती है, हाईडी रखी जाती है। वो खुलकर शिकायत कर सकती है, अगर उन पर कोई अपराध हो रही हो तो वो
1: जी
0: उनके अगेंस्ट जाके केस फाइल कर सकते हैं। उन्हें डरना नहीं चाहिए।

0: ये
1: ऐसे में जो उनके घर वालों, उनसे क्या कहेंगी आप?
0: घर वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी के भी विरोध कर सकते हैं, हम कानून के साथ आगे बढ़ सकते हैं,
1: तभी उनको न्याय
0: न्याय
1: मिलेगा।
0: मिलेगी।
1: जी, और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी।
0: जी
1: बच्चों को और किशोरों को, उनको साइबर अपराध से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?
0: उन्हें सोशल सिक्योरिटी सिखाकर, उनके फ़ोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्ट ऑन कर कर उन्हें सोशल सेफ्टी सिखाने से वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि वो भी इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके चक्कर में वो पता नहीं चलता, वो कुछ भी लिंक क्लिक कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग पबजी खेलते हैं, तो पबजी के चक्कर में उनको UC BC का कुछ वो रहता है कि उनको वो चाहिए रहता है, तो फ्री में मिलता तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लोग उस चक्कर में उनको फेक लिंक्स आती है इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो वो
1: जी,
0: गलती से वो क्लिक कर देते हैं
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से
1: जी
0: वो हैक होकर उनका अकाउंट चले जाता है, और उनका कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे भी ट्रांजेक्ट हो जाते हैं,
1: जी
0: पैसे भी
1: जी
0: कट जाते हैं उनके अकाउंट से, तो उनको पता नहीं चलता।
1: पता। ऐसे में जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनका क्या दायित्व बनता है?
0: पेरेंट्स का यही दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को संभाल कर रखे, मतलब एक्चुअली वो पेरेंट्स का ये है कि बच्चों को अधिक से अधिक समय दे, उनके
1: बातचीत
0: साथ
1: करे।
0: बातचीत करे, खेले, ताकि वो मोबाइल्स गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो।
1: अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी?
0: अंत में मैं श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगी कि सुनिए और समझिए, साइबर युग में आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। हमारे श्रोताओं के लिए ज़रूरी बातें, कभी भी OTP, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड किसी को ना दे, चाहे वो खुद को बैंक अफसर ही क्यों ना कह दे। दूसरी बात यह है कि अनजान लिंक, कॉल या ईमेल से दूर रहे, ये आपके डेटा का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर सोच समझ कर जानकारी शेयर करें। चौथी बात यह है कि अगर किसी साइबर क्राइम का शिकार हो तो डरे नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। और पांचवा पॉइंट ये है कि नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 आपके डिजिटल अधिकारों की रक्षा करता है। कानून अब और तेज और तकनीकी रूप से सक्षम है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होता है। डिजिटल वर्ल्ड में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।
1: तो हम भी अपने श्रोताओं से कहेंगे कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो एडवोकेट वर्षा दास, आज आप कार्यक्रम में आई और आपने साइबर अपराध के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

0: श्रोताओं, अभी आप कानून की बात कार्यक्रम के तहत एडवोकेट बरसा दास से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था साइबर अपराध। इनसे भेंट कर रही थी जयशीला। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िए, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में. और अब श्रोताओं, लीजिए सुनिए धर्मात्मा फिल्म का ये गीत मुकेश और कंचन की आवाज़ों में. इंदिवर के बोल हैं वा कल्याण जी आनंद जी का संगीत.

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार इंदिवर का लिखा गाना हम शामिल कर रहे हैं जाबाज फिल्म से। गायक कलाकार किशोर कुमार और सपना।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाश

सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा

0: रहा है जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
6: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
7: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है, आधुनिकतम

0: नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में हैं। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए रानू मुखर्जी को।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप रानू मुखर्जी को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में मौसम फिल्म का ये गीत।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जनसेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के

0: तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
1: धन्यवाद।
0: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए, आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
1: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसला खतौनी था उनके पास
0: जी,
1: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
0: जी,
1: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से SDM से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा, और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया। मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
0: जी,
1: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
0: जी।
1: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गाँव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
0: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव।

0: होता था, उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गांव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम कि जो बुनियादी सुविधाएं गांव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत,
1: जी
0: यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के, जल जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है, ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गाँव में, हर गाँव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ था कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना लाई गई।
1: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गाँव गाँव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने, बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा, गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तित्व सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी।
2: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोग

0: के पोषण के बारे में हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गाँव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है। इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है। महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
3: देखिए, पानी पहुंचाना एक है लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें

0: चली जाती है, या ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी है जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया, तो एक पानी शुद्ध देकर के इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70 से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने, और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं, देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी एक खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल सही ने है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, और गांवों की भी इसमें बहुत पूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती, तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में, जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है, बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ 2-4 लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाना, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है, तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, माने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
2: लालटेन में पढ़ते थे, अब लालटेन डिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आओगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली

0: पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो पीएससी है वो गांव के पीएससी को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी ज्योतिर्ग्राम
0: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे। उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई। तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज जो सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव गांव में जो है, गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा। बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है, जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी। आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखे जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे कर

0: के पूरे गांव का सर्वे कर लेते हैं,
1: टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया। हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: तो मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: PVTGs के लिए
0: नहीं, PVTG देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे PVTG जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल न जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल

0: फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट
0: विलेज पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उसको करते जी, थे जी। जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड लद्दाख का हो या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये भी सोच कर गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, अब उनके रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहाँ नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है। हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्र साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशिरेखा, क्रिस्टल वॉइस।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये था दुल्हा मिल गया फिल्म का गाना, जिसे लिखा था मुदस्सिर अजीज़ ने और संगीत से सजाया था ललित पंडित ने। आइए सुनते हैं इश्किया फिल्म का गाना राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। बोल गुलजार के हैं वाधुन तैयार की है विशाल भारद्वाज ने।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।

0: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाज़ों में ये था न घर के न घाट के फिल्म का गीत, जिसे लिखा था मुदस्सिर अजीज़ ने व संगीत से सजाया था ललित पंडित ने।
1: आगे है प्रोग्राम।
0: श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: सोल्जर्स, ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटीफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट्स और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं, तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर, हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहाँ भी काम किया काफ़ी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो जॉब कर सकते थे, माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसे हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज़ की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट विजावी आउटसाइड जो मैं देखता था, जैसे जो मुझे तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर रही है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूँ, फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था, और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है, तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्लाइंग से आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में, उसमें मुझे मौका मिला काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज़्यादा मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था। फिर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले फ्लाइंग में, फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं। बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का। सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करो तो वहाँ की फ्लाई, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे
0: जी.
1: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं
0: जी.
1: कहते हैं ये जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो इस जगह के लिए

संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस

0: नहीं बना है ये, पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे। और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन रिलेशन में थी, मेरे को लगता था मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है।
1: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर और ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो ख़तरनाक एरियाज़ में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीज़ें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे, तो वही चीज़ मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज़ थी जो आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9868107070। और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

0: 102.6 एशिया नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की ट्रेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका हमारे शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज़ किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था, हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए ट्रेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो ज़ाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे तो डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, तो ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था, जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
0: तो फिर वो कभी
1: एक बार पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60, मैंने इसलिए बोला ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहाँ पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पर अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर, उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 बजे हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2 P3, अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये प्रोबिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
0: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
1: टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग कर रहा है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे, किस ताकि जो पायलट्स ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाडन में कहीं कोई वो होता है क्रैश होता है तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
0: क्या बात है सर,
1: ये ट्रेनिंग का तरीका है।

0: तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहाँ सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली।
1: जी, तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो अब जो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे
1: जी
0: जहाँ हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है,
1: जी जी आपने
0: आप
1: बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता
0: इनकार
1: है।
0: कर देता है फ्लाइंग की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर,
1: अच्छा
0: उनके बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करें हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह वाइट वाइट वाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच को पेंट तो है नहीं, कभी
1: जी
0: बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी
1: अच्छा
0: चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर आ सके, हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी। तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है,
1: मतलब
0: तो
1: गहरी
0: एक
1: इतनी।
0: बार आप लैंड करने जा रहे हो उधर से,
1: जी
0: पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो एयर बर्स्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो
0: वो
1: खतरा
0: एब्सोल्युटली।
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना
0: मिशन पूरा
1: है,
0: करना,
1: और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है
0: कुछ
1: वहां पर
0: सेकंड
1: प्रॉपर।
0: मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते,
1: अच्छा
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड्स भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था, तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड्स, मे बी अप टू अ मिनट और टू,
1: तो
0: तो
1: मतलब
0: हमको इमिजिएटली वापस आना होता।
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है और उसको फिर
0: एब्सोल्युटली।
1: वापस टेक ऑफ करना
0: और हम
1: है।
0: सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब
1: अच्छा
0: ऑक्सीजन बॉटल्स भी होते थे, मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी
0: क्रेवास
1: गहरी दरारें जो आपने बताया क्रेविस, और
0: क्रेवासिस
1: उसके
0: बोलते।
1: अलावा
0: हाँ अच्छा,
1: हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे,
0: बिल्कुल
1: कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं। तो
0: बिल्कुल,
1: दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयर
1: घात
0: बर्स्ट
1: लगाए बैठा
0: एम्यूनिशन।
1: है कि वो
0: हाँ
1: कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वॉज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली
1: तो
0: एवरी डे।
1: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूं सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जनसेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा है
1: जी
0: ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में, सबसे ज़्यादा मेरे को लगा मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश और
0: एब्सोल्युटली
1: जुनून से भरा हुआ। सर
0: एब्सोल्युटली,
1: आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं,
1: क्या बात है।
0: कभी भी
1: तो
0: नहीं।
1: सर ये जो आपकी बात है, ये जो डेयरिंग सोल्जर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो
0: पर
1: ये जो
0: मैं ये कहना चाहता हूं कि
1: जी
0: मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये मैं नहीं हूं, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो

0: एक ही फोकस होता है,
1: आप
0: वो
1: सर,
0: होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत।
1: आप सर,
0: तो सर, हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं, या
1: आपकी
0: फिर
1: मर्जी, आपकी
0: सर
1: जैसे ठीक
0: मैं
1: है।
0: यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम जान ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
1: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते। जो जो हम यूज़ करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम
0: जी
1: रात को फ्लाइंग नहीं करते। पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
0: अच्छा,
1: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को,
0: ओके,
1: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है,
0: जी
1: मिशन होता है, तो आई
0: जी
1: एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप
0: क्योंकि
1: ट्रेन ट्रेन पायलट
0: ट्रेनिंग
1: हैं।
0: है आपको।
1: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में तो फ्लाइंग
0: नहीं
1: करना
0: फ्लाई
1: मुश्किल
0: कर
1: हो
0: सकता
1: जाता है।
0: जी। यह है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है। जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर,
1: थैंक यू
0: इन्होंने
1: वेरी
0: ये
1: मच सोमिया जी,
0: लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने ये।
1: थैंक यू सोमिया जी, आई एम ग्रेटफुल।
0: और ये हैं सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम। आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर 1, टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
1: थैंक यू अनिल जी,
0: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का। गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली, AIR 102.6 सैल्यूट, एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर
1: थैंक यू
0: आपको।
1: वेरी मच राजेश।
0: और ये हैं विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी ईयर्स, ही इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
1: थैंक यू वेरी विकास जी,
0: ये
1: मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी, तो
1: थैंक
0: ये
1: यू विकास जी।
0: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये हैं प्रवीण जी।
1: प्रवीण जी, ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, और
0: ओके
1: टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं। जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया
0: सर,
1: जाता है।
0: एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहाँ से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके
1: ये
0: लिए
1: आर्मी पायलट की बात कर रहा हूँ
0: आर्मी
1: मैं।
0: पायलट की,
1: हाँ जी,
0: जी
1: हाँ जी,
0: एयरफोर्स की नहीं,
1: हाँ जी,
0: आर्मी
1: नहीं,
0: पायलट,
1: आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर
0: एयरफोर्स का
1: है।
0: अलग प्रोसीजर है।
1: हाँ जी,
0: जी, तो सर सभी को IMA से ही होना कराना
1: नहीं,
0: पड़ता।
1: ऐसा नहीं, मैं
0: अच्छा
1: इंडियन

0: मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले एनडीए होता है। कोई एनडीए के बाद हम तीन आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर।
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
1: जी।
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो। अगर एयरफोर्स में अगर एनडीए में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हो तो चले जाएंगे।
1: राइट सर। सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास। अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया है।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुपल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था, तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: मैं बल्कि बताऊं, अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में तो हमें पता चला एक गन पोजीशन थी जिस पे एवलॉन्च आ गया था, तो वहाँ के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे
0: तक
1: उसमें चपेट में आ गए, तो हमको बोला गया कि वहाँ पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को।

0: तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर,
1: जी
0: तो वहां पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे वो थोड़े साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर की वाटर ड्रमेन से मैंने पिछले
1: जी
0: हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली, तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि वाटर ड्रमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि
1: जी
0: उनके अच्छे से लास्ट राइड्स हो सके।
1: राइट
0: जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में, और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था।
1: जी
0: जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर
1: जी
0: वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स ये फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो
0: टचिंग।
1: आपके साथी सिपाही जो
0: हाँ
1: जवान
0: बिल्कुल
1: थे जब वो शहीद हो गए, तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
0: एब्सोल्युटली।
1: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी
0: हाँ जी
1: और शहीद हुए। सर, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझें हम कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
0: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज़्यादा हम लोग के पास टाइम अब भी नहीं है, बेशक
1: जी
0: आधे घंटे से ज़्यादा। मैं कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है,
1: जी
0: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है।
1: ओके
0: हम सियाचिन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाइयाँ, डॉक्टर्स बैठे, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 1998 की बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, नाइन्टी
1: जी
0: एट अगस्त की बात कर रहा हूँ, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए, वो लोग पीछे चले गए, हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी।
1: ओके
0: तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कौरव सौरभ, कैप्टन सौरभ कालिया,
1: जी
0: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया गया, मतलब मारे गए थे बेचारे।
1: जी
0: और सेक्टर्स में भी हमको, बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई। तब हमें पता चला मार्च 1999 में कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो
1: ओके
0: हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए। हमारी 6 गन्स सियाचिन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी,
1: ओके
0: रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10 6 गनों को, और बोला गया आप जल्दी से जाइए। पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया।
1: जी, तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप में।
0: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9,200 गोले फायर किए थे हमने। हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, हम ऑलरेडी 6 गने हमारी सियाचिन में थी और 6 गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल 2 साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किए, ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स दी एंड
1: बिल्कुल
0: जाके।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था,

0: उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में। और एक चीज़ और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर दी रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या हैं?
1: मैं
0: जी
1: बताता हूँ आपको।
0: जी
1: ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूँ। तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जुजीला पास 15-15-16 फीट बर्फ थी।
0: ओके
1: हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी। फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इन
0: अच्छा
1: टू द कारगिल।
0: राइट
1: जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके आपको बताया, ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं।
0: ओके
1: हम लोग सब हैरान हो गए। उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था वो।
0: अच्छा
1: हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं,
0: वो
1: टाइगर
0: ऑक्यूपाइड
1: होल
0: हुई।
1: हो या 5.15140 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं,
0: जी
1: तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं
0: तो
1: है
0: उसी
1: इनको।
0: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
1: हमारी
0: इसलिए उनको
1: हिल्स
0: रेड हिल्स का नाम दिया गया।
1: मैंने रेड हिट का नाम दी थी। मैंने बोला है कि उनको
0: अच्छा
1: पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर,
0: ओके
1: पूरा एरिया, पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी
0: एनिमी
1: और ब्लू
0: ऑक्यूपाइड
1: मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है। दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग
0: जी
1: रेड।
0: सर, वहां के कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
1: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारे रोड्स को देखती थी, मतलब
0: अच्छा
1: रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए। उन गन्स को बिना आवाज़ किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
0: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता था।
1: होता था, वो फायर करते थे,
0: अच्छा
1: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ। रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, ये तो छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे, इतनी
0: बिल्कुल
1: चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था। और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और वो फोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई। तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
0: अच्छा
1: और जहाँ से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया। और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस
0: तो
1: मिली।
0: मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स, जो जवान थे, उनका जोश पूरी तरीके से हाई था और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकालें।
1: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात, कि
0: जी
1: ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
0: जी
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था,
0: ओके
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता। तो वो हिल्स होती है ऊपर,
0: जी
1: जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना।
0: बिल्कुल
1: कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह।
0: बिल्कुल
1: हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके। हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे, तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहाँ इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ क्या सक्सेस सिग्नल, हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे कि हमको
0: अच्छा
1: सक्सेस मिला है कि नहीं।
0: जी
1: दिस वॉज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे
0: एवरी डे। और सर ये लगातार बहुत दिन
1: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा है।
0: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था, सिपाहियों का,
1: बहुत
0: जवानों
1: हाई
0: का,
1: था,
0: बहुत
1: बहुत
0: हाई
1: हाई
0: था,
1: था, बहुत हाई
0: तो
1: था।
0: सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे? जैसे परिवार से तो फिर जाहिर याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे सर?
1: ऐसा है हमारे को ना हफ्ते में एक बारी फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया
0: अच्छा
1: सैटेलाइट फोन है,
0: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता है।
1: स्पेशल तो थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता है, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बारी बात कर सकते हो। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे
0: जी।

0: टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए, तब
1: जी
0: मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो
1: बिल्कुल
0: थोड़ा फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बारी बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे, माँ बाप आवाज़ जब फैमिली
1: अच्छा
0: सुन लेते को अच्छा
1: जी
0: लगता।
1: जी
0: इधर से चिट्ठियाँ इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है,
1: जी
0: पूरा देश, ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता है ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई, तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए,
1: अच्छा
0: अच्छी अच्छी चीजें, पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का,
1: वहां पर
0: वहां
1: गिफ्ट
0: पर
1: आ रहे हैं
0: चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर
1: जी।
0: उनको रोकना पड़ा।
1: अच्छा तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए
0: बहुत
1: परिवार से
0: मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन।
1: जी।
0: मतलब हर कोई, छुट्टी तो सबकी कैंसिल
1: छुट्टी तो
0: थी,
1: कैंसिल
0: मैं
1: सबकी
0: आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है। एक
1: जी
0: हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे
1: जी
0: पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, कि कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जाना, कहते सब मजाक कर रहे, तो

0: छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में, कहता बहुत ज़रूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई। कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया, चार पांच गया था 15 दिन के लिए। अच्छा। चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर। हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया, कहता साहब मैं गांव पहुंचा बहुत जूते पड़े मेरे को, मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे, कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा देश, चोला ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
1: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
0: पूरा देश आपके साथ,
1: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
0: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
1: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है। मुझे था ये जहन में कि मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: 1.6 नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं। जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशंस थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हुई। बिल्कुल है, मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी। तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया, बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजयन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOCNC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी है एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन।

0: पाँच सालों से ज़्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा।
1: थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफ़ी अच्छे काम किया हमने। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफ़ी काम किया। 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी, आर्मी छोड़ने की। अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया
0: आपने। फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीज़ों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था। आपने
1: शायद, मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जो मेरे जॉब खत्म करने के बाद मैं अपने, तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला, जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम पर ऐसा था, जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था, हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, हम गेट्स को मैनेज करना किसी, और कोविड ऐसी चीज़ थी, आदमी हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी, तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी हमारी कॉलोनी में। हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैंप लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे, तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम मैं RW में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं। तो
0: सर, उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
1: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
0: लेकिन सर, आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया, वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो, तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी। किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे, तब आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
1: मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे 3 बच्चे लड़के हैं, मतलब 3 बच्चे हैं, अंकित, शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है, और मेरी डॉटर रिलोदृषिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है उन लोगों।
0: बिल्कुल सर,
1: आई एम क्वाइट अ ब्लेस्ड मैन।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहाँ पर सर मैं अभी, तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर कर दूं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट, विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
1: He can join every branch. As an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that. Okay. And as an engineer, he can join that technical branch.
0: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी।
0: और ये है कर्नल अरिंदा, इज वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स। विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर FM, आई एम ऑनलाइन, थैंक्स।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: कर्नल नंदा, वाह वाह कर्नल नंदा, ग्रेट ऑफ यू।
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
0: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में।
1: और ये है तारीफ क्या था, आपस का प्यार है सबका ही।
0: बिल्कुल सर। ये सर हैं डॉक्टर दीपक जोशी। सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
1: हाँ जी।

0: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देश हित दशरथ ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूँ मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चन्नप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद। तो सर
1: सरावत
0: ये
1: साहब, थैंक यू,
0: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं
1: थैंक यू
0: और
1: सर।
0: कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माँ के रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना, रायबरेली। तो सर
1: थैंक
0: ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में, और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ पर
1: थैंक
0: चलते
1: यू,
0: चलते
1: थैंक यू वेरी मच।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर, बहुत
1: थैंक यू
0: बहुत
1: गिविंग मी
0: धन्यवाद।
1: दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू सर,
1: वेरी
0: थैंक यू
1: मच,
0: सो मच सर।
1: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।
2: लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1380वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए, क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार।

0: जी, उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
1: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
0: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
1: जी
0: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
1: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
0: श्रोताओ, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया।
1: जी,
0: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
1: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
0: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
1: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
0: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था।
1: जी,
0: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
1: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया।
1: जी,
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
1: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
1: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू,

0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
1: धूप जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

ये लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1380वीं कड़ी सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंग रे तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलो हर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही हॉय हांगरन मने चोग महावट करे नेलक एल हॉय नेकुन पनाम ही एम वी भारत सीमा चु माय मंदर द डिग्ली बोर्ड इप्त हो रही तने रनाय ता फुल अलांग चिंगे इत है वर कहीं रो तहा तम नलक ने हेड वाफ ngaj hawa nip tene ranai sat alang chingi it net kain ro da sakam narang diklipur sek mai bandar admin ngam chong el tala kare na jusri vijaypuram chamu lidilana man hek chong mv campbell bay Julie Dilanaman if the Nerana sat along watching it, it the Majutra Kaino, the Lapuhu, the Lugna head of Machavan, if he, it the Majutra Kaino, the Hatam, Narang, Lidilandaman, Najusri, Vijaypuram, Chamu, Lidilanaman hik the Carnicobar, MV Sentinel, Chu, Lidilandaman, the Carnicobar, if the Nerana the food along watching it, it the Sat Kaino, the Lapuhu, the Lugna head of Machavan, if the Nerana sat along watching it, it the Fen Kaino, the Harap Narang, Carnicobar, Suck Lidilandaman and Mingam Chong, El Talagre. Naju Sri Vijaypuram Nalanda Chu Nankore the Campbell Bay Tenerani Machutra along watching it it a Majutra Kainro the Lapuhu Nalaknya head of Majhavan Ibrane Ala of October Ching it it have Kainro the Lapuhu Narang Campbell Bay Sek Nankore and Mingam Chung Elta Lakare Naju Sri Vijaypuram Anununne Minkatalon hi Ingharap.

0: nga chi in tai hang minit ta len lang tin ge ka dik nge he cho chi pet vinsen hoi hang atel hang na sin ta mu he in hore chang ra ngi ta ka sa de the fan ka ra ta la harap nga yen
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजकर दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുര നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है।

0: तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law, and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council.

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें। प्यार की सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुलनीय योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक। जाने

0: अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और बहुत मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
0: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है आपके सामने, आपको

0: पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है। ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
1: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
0: कोई भी गीत, कोई भी
1: लता जी का गाना है।
0: हाँ?
1: आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे,
0: क्या बात है,
1: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए।
0: और हम आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है ना अलका जी, जब आप मुड़कर देखते हैं कि मतलब मुझे पद्म भूषण मिला है तो जिंदगी में मैंने क्या क्या हासिल किया। आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार हासिल किया है सबका, किसको देती है इसका श्रेय?
1: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपनी माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी, और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में, ताकि उसको जिस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं।
0: बाकी बहुत खुश होती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुंचाया था। तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
1: हाँ, किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे, और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
0: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
1: हाँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब मैं आई इस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था, तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए गाने को। एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
0: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया। कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज, कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है, जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
1: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है, और जूही चावला, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
0: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
1: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी। गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
0: अच्छा, अगर गायकों की बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोर दा के साथ साथ आपने उदित नारायण कुमार, सानू तक, सबके साथ ही गाने गाए हैं। इन सबके साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
1: किशोर कुमार।
0: कोई वाक्या याद है?
1: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त, रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था। फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
0: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
1: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
0: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप साइशा को क्या लोरी सुनाती थी?
1: साइशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
0: अच्छा,
1: वो फिर गाती थी मैं उनके लिए, उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
0: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
1: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते थे, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
0: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ, एनी टाइम?
1: एक दिन आप ही हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
0: आपसे एक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का।
1: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: ओके, क्लासिकल म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक।
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस।
0: ओके, एक सॉन्ग कोई भी कभी का भी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया हो?
1: ये गाना जैसे है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया
0: जी,
1: लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता है।

0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगारी हैं।
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती, नॉर्मल।
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या कुछ, मैं यूं ही गाती थी। मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
0: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगी?
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
0: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना चाहेंगे?
1: ना, फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर। ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
0: Well, that is so nice of you. Thank you so much, Alka ji. I'm sure हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सबके तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:21 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं देश गान।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000 947423400। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लकी फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है आसाम से हितेंद्र दास ने।

अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवार के सभी सदस्य सुनना चाहते हैं घायल फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ब्रेक के बाद आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है।

श्रोताओं, अभी आपने अंजाम फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत को सुनने के शौकीन थे टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। आइए अब सुनते हैं रोटी फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा।

श्रोताओं, और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत आराधना फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: While Anahat Singh and Abhay Singh entered the last four in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone. Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IBSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय

0: स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं

0: सर फिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 36 घंटे में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: दोस्तों, उम्मीदों का दिया दिल में जलाए रखना, हर हाल में खुद पर विश्वास बनाए रखना, कल बेहतर होगा ये यकीन रखना, बस आज को पूरी शिद्दत से जीते रहना। इस खूबसूरत संदेश के साथ करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। मैं हूँ इस सफर में आज आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो अपना नाम, पता व फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाइए हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जुड़ते हैं हमारे पहले दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं इंदौर से, रेवा राम जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: यस मैम,
0: रेवा राम जी से बात हो रही है?
1: जी मैडम, बिल्कुल।
0: रेवा राम जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम, धन्यवाद आपको।
0: रेवा राम जी, इंदौर में क्या करते हैं आप?
1: मैडम, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा एचडी

0: प्रोटेक्शन का काम है
1: जी।
0: जी।
1: और इसके अलावा क्या शौक रखते हैं आप?
0: इसके अलावा मैडम मैं पढ़ना पसंद करता हूँ
1: जी
0: और गाना सुनना, म्यूजिक में मैं तबला प्लेयर हूँ।
1: जी जी बहुत बढ़िया। और वैसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं?
0: नहीं पढ़ाई तो हो चुकी मैडम, मेरे को 16 ईयर से मैं जॉब करता हूँ।
1: जी जी जी तो मतलब आप पढ़ाई पढ़ते हैं करके बोल रहे हैं, तो मतलब मैंने
0: नहीं
1: इसलिए
0: नहीं
1: आपसे पूछा।
0: अच्छा अच्छा तो मैडम जो एंशिएंट बुक्स होती है इस टाइप का मैं
1: जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैम धड़कन फिल्म का गाना है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, अभिजीत सर की आवाज में। जी
1: तो फिर चलिए सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद।

0: चलिए अब संपर्क साधा करते हैं हमारे अगले दोस्त से, जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, रामलाल जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: रामलाल जी से बात हो रही है?
1: जी बिल्कुल।
0: रामलाल जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे बात करके और अच्छा हो गया।
0: चलिए अच्छी बात है। वैसे जोधपुर राजस्थान के क्या हालचाल हैं, मौसम कैसा है वहाँ का?
1: जी बहुत ही गर्मी पड़ रही है, जून जैसी गर्मी पड़ रही है और
0: बारिश अभी तक
1: मौसम,
0: शुरू नहीं हुई है क्या?
1: जी यहाँ पर बरसात नहीं है, मतलब मौसम शुष्क है।
0: जी, मतलब मौसम वहाँ पे कब रहता है बारिश होने के लिए?
1: बारिश तो आमतौर पे ये मानसून सत्र में होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई थी ज्यादा।
0: जी, मतलब तो अभी गर्मी हो रही है।
1: बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: जी, वैसे आपको कैसे मौसम पसंद है, गर्मी, सर्दी या ठंड का
1: सर्दी
0: मौसम?
1: का मौसम, सर्दी का मौसम बढ़िया लगता है।
0: चलिए अच्छी बात है। आज इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े हैं, वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहेंगे?
1: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुनाओ जी।
0: हाँ, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है जुल्म की पुकार और ये इश्क मोहब्बत की रस्में।
0: जी, ये गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आप किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी मैं ये आपको ही डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: चलिए अच्छी बात है, हम आपके जो भी दोस्त हैं, हमारे जो रेडियो सुनने वाले दोस्त हैं, सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: चलिए अब जुड़ते हैं शैतान खाड़ी श्री विजयपुरम की रहने वाली मोनिका जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो मैम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून।
0: बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। मोनिका जी से बात हो रही है।
1: जी मैडम,
0: मोनिका
1: मुझे बहुत
0: जी
1: खुशी हो रही है आपने कॉल किया।
0: जी, चलिए बहुत दिन हो गया था आपसे बात करके, तो हमने जो है अपने दोस्तों को याद किया है ना।
1: जी जी जी
0: कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। वैसे क्या कर रही थी आप, हमने कॉल किया आपको?
1: मैं केला पकोड़ा बना रही थी, आप आइए।
0: अच्छा है, ठंड का मौसम है, साथ ही केले के पकोड़े भी मिल गए, बहुत
1: जी जी जी जी
0: मौसम पे सुहागा हो गया है ना।
1: जी मैडम,
0: जी अच्छी बात है। आज हम आपसे जुड़े हैं, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सुर मूवी का आभी जा वाला गाना।
0: जी बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, और ये किन के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले तो आप हैं,
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरी भांजी दीपल, दीपक दसर, बुन्नी मैडम, और शादीपुर से सप्तमी कुंडो दीदी है, और स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, बिम्बलीगंज से शिप्रा है, बमका से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनीचांद जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और त्रिपुरा से संगीता दीदी है, और आशुतोष भैया है, और सुनने वाले सभी दोस्तों का सुनना चाहते हैं।
0: तो चलिए फिर सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।
0: वेलकम।

चलिए अब जुड़ते हैं पुरुषोत्तम जी से, जो कि रहने वाले हैं पंजाब के। हेलो डियर फ्रेंड्स, शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम सुनते हैं ये गीत।

0: चलिए बात करते हैं पुरुषोत्तम जी. पुरुषोत्तम जी जो कि रहने वाले हैं पंजाब से, उनसे संपर्क टूट चुका था, उनसे हमने फिर से संपर्क किया है. हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: जी नमस्कार
0: बहुत बहुत नमस्कार. पुरुषोत्तम जी से बात हो रही है.
1: जी। कपूरथला

0: आपसे बोल रहा हूँ जी, पुरुषोत्तम।
1: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत जो
1: जी
0: याद किया बहुत दिनों बाद।
1: पुरुषोत्तम जी, वैसे पंजाब के क्या हाल चाल हैं?
0: पंजाब की हाल चाल, बस मानसून जो है वो वापस चली गई है, बस
1: मौसम जो है
0: तो
1: गर्मी दे रही है अभी।
0: हाँ, इस बार बारिश भी कम हुई है। हाँ
1: जी।
0: हाँ
1: पुरुषोत्तम
0: इसलिए
1: जी, किस टाइप के गाना सुनते हैं, पुराने नए?
0: मेरे को मैडम, पहले बात तो ये है कि पुराने गाने अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ थीम होता है, कुछ अच्छी अच्छी आवाजें हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिंगर थे। मेरी सबसे प्रिय सिंगर वो थी, क्या नाम उसका, डेथ हो गई पीछे, लता जी थे और सुमन कल्याणपुर जी थे जी। आपके भी जो अनाउंसर है ना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हैं,
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और हम सोचते हैं कि चलो नाम

0: बारिश भी कम हुई है। हाँ
1: जी,
0: हाँ
1: पुरुषोत्तम जी
0: इसलिए
1: किस टाइप के गाना सुनते हैं, पुराने नए?
0: मेरे को मैडम, पहले बात तो ये है कि पुराने गाने अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ थीम होता है, कुछ अच्छी अच्छी वाजे हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिंगर थे। मेरी सबसे प्रिय सिंगर वो थी, क्या नाम उसका, डेथ हो गई पीछे, लता जी थे और सुमन कल्याणपुर जी थे। जी, आपके भी जो अनाउंसर है ना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हैं,
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और हम सोचते हैं कि चलो नाम पूछ लिया जाए किसी का, तो अच्छा लगता है, याद करते हैं बाद में।
1: जी, तो
0: जी,
1: इस कार्यक्रम से आज हम आपसे जुड़े हैं, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैडम मेरे को अंदाज फिल्म का गाना है ना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। आप जी
0: एक दोस्त है मेरे,
1: जी जी
0: ये धर्मवीर भाई साहब हैं दिल्ली से, उनके अभी बच्चे तो नहीं है, उनके एबल टू मैरिज हो गए हैं हम लड़के दो,
1: जी जी
0: तो कुछ लोग अभी बच्चे कहते हैं उनको, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक आदमी है वो,
1: जी
0: गिरे हुए को उठा देते हैं बातों बातों में। तो
1: चलिए, अच्छी बात है। और
0: एक हमारे इधर शतान, क्या बोलते हैं, खाड़ी की लड़की है मोनिका, वो उसको मैं बच्चों जैसा ट्रीट करता हूँ,
1: जी,
0: इधर अपने संदीप मकड़ जी हैं पंजाब से हमारे फिलौर के, और भी भाई साहब बहुत हैं, किस किस का नाम लें।
1: जी।
0: और
1: तो जो भी सुन रहे हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, सभी को हम ये गीत डेडिकेट करते हैं। आपसे बात हुई,
0: ओके
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू मैडम जी,
1: वेलकम।
0: ओके।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए अब कॉल लगाते हैं केशव जी को, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: हेलो डियर फ्रेंड,
1: केशव जी से बात हो रही है?
2: जी मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: जी केशव जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैम,
1: आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
2: हाँ जी, हाँ जी आ रही मैम।
1: जी वैसे दिल्ली के क्या हाल चाल हैं?
2: मैम दिल्ली के हाल चाल तो बढ़िया है, आज का मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, थोड़ा लाइट लाइट है
1: जी।
2: अभी तो बारिश हो गई थी, पीछे जन्माष्टमी में काफी तेज, कृष्ण जी का बर्थडे था जी, उस दिन तो मैम बड़ी तेज बारिश हुई, हम मंदिर गए घूमने काफी जगह जी। अब तो मैम वैसे धूप आई हुई है इस टाइम, तो मौसम ठंड का आ गया मौसम। और आज गणेश चतुर्थी का लास्ट मतलब वो है विसर्जन है
1: जी,
2: तो मतलब सब फैमिली वाले सब गए हुए घूमने के लिए
1: गंगा। कैसे आपने सेलिब्रेट किया गणेश जी का?
2: मैं अभी सब गए हुए भाई, मैं बस मैं ही घर पे हूँ, बस मम्मी पापा घर पे।

0: वैसे घर पे कौन कौन है आपके?
1: वैसे तो मैं मम्मी पापा है, भाई है, बहन है, दादी है, चाचा सभी हैं। और
0: तो
1: कल मैम सिस्टर है मेरी बड़ी, उनका कल बर्थडे भी है
0: जी
1: 26 सितंबर
0: चलिए
1: को।
0: उन्हें अभी से हम शुभकामनाएं दे देते हैं, उनको बहुत
1: जी
0: बहुत
1: मैम,
0: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: आपके परिवार मतलब भरा पूरा परिवार है, तो सबके साथ
1: जी
0: मिलकर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम, मूवी का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा और गाने के बोल है शीशी भरी उम्र प्याली की।
0: जी, ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आप किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जैसे मैम, सबसे पहले तो आप ही के लिए शवाना जी, और मेरे फादर है धर्म जी, भाई है नितिन, और जी हैं, पूर्णिमा जी है, शिप्रा जी, लिली जी, पाकिजा जी, पुलटी दास जी, और मेरी भांजी है यशिका, और तनुश्री जी के लिए। और जैसे अंकल में, जैसे लोकेंद्र अंकल है, गजराज अंकल है, पुष्कर नाथ अंकल है, पुरुषोत्तम अंकल है, संदीप मकड़ अंकल है, राजेश जी है, गोल्डी है, राकेश, नतीश जी, जितने भी है सभी के लिए मैम। और
0: तो चलिए फिर सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: बहुत बहुत वेलकम।

0: चलिए अब जुड़ते हैं अनु पांडे जी से, जो कि गोंडा यूपी की रहने वाली हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो, छुप गया है सूरज, छुप गया है सूरज, पड़ रही है खुशियों की फुहार, तरंगों के जरिए आ रही है रेडियो पे मैम आपकी मीठी सी आवाज। नमस्ते।
0: बहुत प्यारी सी आवाज़ है आपकी, ये अनु पांडे की आवाज़ है ना? आपका बहुत बहुत स्वागत अनु पांडे जी। क्या करती हैं आप?
1: मैं तो पढ़ाई करती हूँ, तैयारी की मतलब कर रही हूँ, और रेडियो सुनती हूँ, और अभी ना आपकी आवाज मुझे बहुत प्यारी बहुत मीठी लग रही है।
0: इससे प्यारी तो आपकी आवाज़ मुझे लग रही है, बहुत ही मीठी सी प्यारी सी। वैसे क्या पढ़ती हैं आप?
1: मैं तो एमएससी कर रही हूँ।
0: जी, एमएससी के साथ साथ गानों के शौकीन भी रखती हैं शायद आप।
1: मुझे गाने सुनना, रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, रेडियो ना सुनो तो दिन ही नहीं गुजरता।
0: चलिए, अच्छी बात है, गानों का शौकीन भी होना बहुत ज़रूरी है ना ज़िंदगी में।
1: हाँ
0: जी
1: मैम, म्यूजिक है ना, तो चाहे जितनी प्रॉब्लम हो या जिनकी तबीयत अच्छी ना हो, स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या किसी तरह का भी टेंशन हो, पर म्यूजिक से सब कुछ दूर हो जाता
0: जी
1: है।
0: जी म्यूज़िक भी गीत भी ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के जैसे ही होते हैं ना। जी, जैसे सिचुएशन होता है वैसे ही गीत भी हैं, हम सुन लेते हैं तो हमें तो रिलैक्स मिल जाता है, ऐसे ही है ना जी। तो इस कार्यक्रम से आप जुड़ी हैं, कौन सा वो प्यारा सा गीत है जो इस कार्यक्रम के माध्यम आप सुनना चाहेंगी?
1: पहले तो मैं कुछ कहना
0: हाँ,
1: चाहूंगी।
0: ज़रूर बोलिए।
1: उजड़े हुए चमन में मौसम बहार आ गया, उजड़े हुए चमन में मौसम बहार आ गया, आज दीपाल क्या आ गई, मेरे दिल को करार आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह, मतलब आप शायरी की भी बहुत शौकीन है।
1: हाँ मैम, मुझको तेरे शायरी बहुत पसंद है।
0: जी, अच्छी बात है, ऐसे ही शेर व शायरी लिखते भी रहिए, हमें भी सुनाते रहिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में हम जो आपको गीत सुनवाएंगे, आप बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: मैम, फिल्म का नाम है चॉकलेट, और गाने के बोल है मम्मी को ही नहीं पता, ये गाना सुनना चाहूंगी।
0: अच्छा, ये किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: मैम सबसे पहले तो आपको, और
0: जी
1: अपनाज भैया को, और भगवान सिंह परमार, राकेश सेनन सिरी, और जितने लोग सुने सभी को, विजय कुमार पांडे।

0: चलिए, आपके दोस्तों के साथ साथ हम भी सुनेंगे और सभी दोस्तों को भी सुनवाएंगे आपकी ये पसंद का गीत। आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके बाय।
0: बाय।

0: चलिए अब बात करते हैं आज हमारे कार्यक्रम के आखिरी दोस्त से, असम से अनूप कुमार भट्टाचार्य जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो हेलो डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून।
0: बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। अनूप जी से बात हो रही
1: जी
0: है।
1: जी बहुत दिन के बाद
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: आप लोगों का ख्याल आया। जो
0: चलिए।
1: एक एक सुता बंधु है आसम से, है ना? ठीक
0: जी
1: है, बहुत अच्छा लगा। तो
0: जी,
1: देर से आए, देर से
0: दुरुस्त आए,
1: आए मतलब
0: देर आए
1: दुरुस्त
0: दुरुस्त
1: आए।
0: आए। जी जी
1: जी जी जी तो
0: चलिए, अच्छी बात है। वैसे असम का
1: मैं
0: क्या हालचाल है?
1: जी, हालचाल तो बहुत अच्छी है अभी। मतलब थोड़ा बहुत क्या हुआ, बारिश थम गए और आकाश एकदम साफ हो गया, नील आकाश और साथ ही साथ क्या बोले, सफेद सफेद मेघों का राज है ना।
0: जी,
1: और
0: सब चला गया।
1: दुर्गा पूजा आ रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: एक बात कहूँ मैम,
0: जी बोलिए।
1: कुछ

0: सूत्र जुड़े है, कुछ सूत्र जुड़े है बिना धागों से, ना ही यादें छूटेगी और ना ही धागे टूटेगी, है ना
1: जी, हाँ, हाँ, बहुत
0: और cool. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विजय श्री विजयपुरम से हमारे नाता तो बहुत दिनों का है ना.
1: जी जी
0: तो
1: नाता बहुत
0: बहुत
1: ही जी, इसलिए हमने आपको याद किया है अनूप जी. तो
0: जी,
1: हमारे पास समय की कमी है, आप जल्दी
0: समय
1: से
0: की
1: हमें
0: कमी
1: बता
0: है. जी
1: दीजिए
0: जी
1: कौन सा
0: तो
1: गीत सुनना
0: चलिए चलिए,
1: चाहेंगे.
0: आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ. फिल्म का नाम है आस्ती की और
1: जी
0: गाने का बोल ऐसे, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, ऐसे करके गाने हैं. कुछ
1: जी,
0: दोस्तों
1: बहुत
0: को मैं
1: ही,
0: याद करता
1: हाँ,
0: हूँ.
1: बहुत ही प्यारा सा गीत है, आप जल्दी
0: जी
1: से
0: जी
1: बता
0: जी
1: दीजिए.
0: इस जमाने में बहुत ये ब्लॉकबस्टर गाना है.
1: जी
0: और चलिए कुछ दोस्तों को मैं याद करता
1: हाँ,
0: हूँ.
1: जल्दी से बता दीजिए
0: पहले
1: आप.
0: है हमारे छोटा बहन जिसका नाम है सप्तमी कुंडू जी, टिप्रा जी, और मेरा दोस्त है उसका नाम है अविनाश जी, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, बसंतीला सूर्यवंशी जी है, श्रीकांत जोशी जी बस, और ये है विजय सिंह लखेरा जी और अमर सिंह साहू जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मन भवन प्रोग्राम श्री विजयपुरम के सबके लिए और खास करके आपके लिए.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए फिर हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत. बहुत
0: जी
1: बहुत
0: जी थैंक
1: धन्यवाद.
0: यू, धन्यवाद आपको.

दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। चलते चलते यही कहूंगी कि रास्ते कठिन है तो होने दो, कदमों को मगर रुकने मत दो। आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी जरूर, अपने सपनों को झुकने मत दो। इस खूबसूरत से विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

0: विविध भारती FM 3
1: विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। अब पेश है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में मैं शबान आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी बहुत खास होती है। किसी अजनबी से मिलकर भी अपनापन महसूस होता है। कभी कभी मुलाकात दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाता।

दोस्तों, इंतजार का अपना ही एक अलग एहसास होता है। हर गुजरता पल किसी इंसान की याद दिलाता है। दिल को बस उसी एक मुलाकात का इंतजार रहता है जिसका ख्याल चेहरे पर मुस्कान ले आए।

दोस्तों, कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि हर बार और करीब महसूस होती है। एक गीत, एक धुन और कोई पुराना पल पूरी कहानी को फिर से सामने ला देता है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिनकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। उनकी याद दिल में रहती है और चेहरा आँखों के सामने, और दूर होकर भी वो हमेशा हमारे करीब लगते हैं।

दोस्तों, प्यार सिर्फ एक पल का एहसास नहीं, बल्कि वक्त के साथ निभाया जाने वाला रिश्ता है। सच्चे रिश्ते में साथ और भरोसा सबसे ज़रूरी होता है, और यही रिश्ते को खूबसूरत बनाता है।

दोस्तों, हौसले बुलंद हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। छोटे छोटे कदम भी बड़े मुकाम बनाते हैं। जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इन्हीं हौसलों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने सपनों को पूरा करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाज़त।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

0: जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन, श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी, उसके दिल पर छाई घटा बन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

0: यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहां निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहां आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे, उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी, वो भी एक मध्यम

0: के परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ, शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।
1: ये

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं।

तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है और, श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ, और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना?

0: रखने के बाद उसे याद आया कि 7 फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति?
1: ठीक है।
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
1: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो?
0: कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से

उसकी परेशानी सुनती रही। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम? श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो? एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता? रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई, उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो? रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो? अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो? अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं, हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा? इंसानी जीजी विशा? वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों? रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं तमिल कार्यक्रम से।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ रागिनी और इस कृषि जगत कार्यक्रम में मैं आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक अनमोल विचार के साथ किया जाता है, और क्या है ये अनमोल विचार, तो आइए सुनते हैं। जो आग में तपता है वही सोना बनता है, जो डरता है वह मिट्टी रह जाता है। साथियों, चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में मूल्यवान और सफल बनता है। इस विचार के बाद अब बारी है प्रश्न की, और आज का प्रश्न है, उड़द में बुआई के कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए? साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, उड़द में बुआई के कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही

0: कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ।
1: परंतु सभी

0: और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जी हाँ साथियों, हमने बीज बोया, खाद पानी दिया और महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार की। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली कमाई कटाई के बाद शुरू होती है। कटाई उपरांत सब्जियों व फलों की देखभाल कैसे करें, आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक चर्चा। अक्सर किसान भाई सोचते हैं कि तोड़ लिया तो काम खत्म। नहीं, अगर तुड़ाई के बाद सही देखभाल नहीं की तो 20-30% फल सब्जी खेत से मंडी तक पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, याद रखिए ये चार मंत्र। पहला, सही समय पर तुड़ाई। सब्जियों को कभी भी दोपहर की तेज धूप में ना तोड़े, सुबह या शाम के समय तुड़ाई करे। जैसे भिंडी, टमाटर, आम का थोड़ा कच्चा तोड़ना बेहतर रहता है ताकि वो मंडी तक सड़े नहीं। दूसरा, छंटाई और सफाई। तुड़ाई के बाद दागी, कटे फटे और अच्छे फलों को अलग अलग कर ले। मिट्टी लगी है तो साफ कपड़े से पोंछ ले, पानी से धोना हो तो तुरंत सुखा भी ले। नमी ही सड़न का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, पैकेजिंग। बोरियों में भर कर मत फेंकिए, हवादार टोकरी, प्लास्टिक क्रेट का इस्तेमाल कीजिए। नीचे और ऊपर अखबार या पुआल लगा दीजिए ताकि फल दबे नहीं। चौथा, भंडारण। हर फल को ठंडक चाहिए पर फ्रीज नहीं। प्याज, आलू को हवादार जगह पर रखिए। पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया पर हल्का पानी छिड़क कर गीले बोरे से ढक दे और हो सके तो सुबह तोड़कर शाम तक मंडी पहुंचा दे। तो याद रखिए, अच्छी पैदावार से आप फसल उगाते हैं लेकिन अच्छी देखभाल से आप मुनाफा कमाते हैं। कटाई अंत नहीं, आपकी कमाई की असली शुरुआत है। कटाई के बाद फलों और सब्जियों की देखभाल कैसे करें? साथियों, खेत से फसल तोड़ना ही काम खत्म होना नहीं है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अगर कटाई के बाद सही देखभाल नहीं की तो 20-30% फल सब्जी खेत से बाजार तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाती है। समय पर कटाई का होना बहुत जरूरी है। टमाटर, पपीता, केला ये तोड़ने के बाद खुद पक जाते हैं, पेड़ पर पूरा पकाने से ये रास्ते में ही सड़ जाते हैं। पालक, धनिया, लाल साग जैसी पत्तेदार सब्जियों की कटाई सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच करें। भिंडी, कुंदरू, सेम की तुड़ाई एक दिन छोड़ कर करें। तोड़ने का सही तरीका, हाथ से झटका मारकर ना तोड़े, चाकू का इस्तेमाल करें। टोकरी में कपड़ा या केले का पत्ता बिछा ले ताकि फल सब्जी पर चोट ना लगे। चोट लगने से सड़न जल्दी शुरू होती है। कटाई के तुरंत बाद 4 जरूरी काम। खेत की गर्मी निकालना सबसे जरूरी है। तोड़ते ही उसे छांव में लाए, साफ पानी में 5-10 मिनट डुबोकर छांव में सुखा दे। सफाई और छटाई के लिए 3 ढेर लगाए। 1 नंबर माल बेचने के लिए, छोटा या हल्की दागी माल घर में खाने के लिए। सड़ा गला माल तुरंत अलग फेंक दे वरना पूरा माल खराब हो जाएगा। प्याज, लहसुन, अरबी को तोड़ने के बाद 2-3 दिन हवा में फैला कर सुखाए। इससे ऊपर का छिलका कड़ा हो जाता है और वह सड़ता नहीं है। बोरियों में भरकर उसके ऊपर खड़े ना हो, हमेशा हवादार प्लास्टिक क्रेट या बांस की टोकरी का इस्तेमाल करें। टोकरी के अंदर अखबार या सूखे पत्ते लगा दें। केला, पपीता, टमाटर को कभी भी एक के ऊपर एक भरकर ना रखें। भंडारण, पत्ता गोभी, पालक, धनिया गीला बोरा उड़ाकर छांव में रखें। 1-2 दिन चलेगा। केला, पपीता, आम हवादार टोकरी में ठंडी जगह पर 3-5 दिन तक का ठीक रहता है। प्याज, लहसुन, कद्दू मचान पर जहां हवा लगती है वहां रखें। याद रखिए, अच्छी पैदावार से आप फसल उगाते हैं लेकिन अच्छी देखभाल से आप मुनाफा कमाते हैं। कटाई अंत नहीं, आपकी कमाई की असली शुरुआत है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कटाई उपरांत सब्जियों व फलों की देखभाल के संदर्भ में एक चर्चा।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि घर के पृष्ठ भाग में यानी घर के पिछवाड़े में भी मुर्गियां पालकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? जी हां साथियों, मुर्गियों की नस्लों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सुनते हैं एनसी चौधरी से की गई ये खास बातचीत।
2: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे घर के पिछवाड़े जो मुर्गी पालन करते हैं उसके लिए उत्तम प्रजातियों के बारे में। और हमारे साथ कार्यक्रम में हैं के श्री एनसी चौधरी। चौधरी साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चौधरी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो घर के पिछवाड़े, जहां तक मुर्गी पालन का सवाल है, तो हमारे इन द्वीपों की परिस्थिति को अगर हम देखें तो ये कितना उत्तम है, इसकी संभावनाएं कितनी है?
3: यहाँ तो घरेलू मुर्गी पालन अच्छा संभावना इसमें है, क्योंकि जो कामकाजी महिला हैं ये घर में बैठ के कुछ इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ घरेलू मुर्गी पालन में अधिक से अधिक लाभ हम इसे उठा सकते हैं कम खर्च में। और ये जो मुर्गी हम इसमें पालते हैं बैकयार्ड में, जो घरेलू मुर्गी पालन है, इसमें मुर्गी में बीमारी भी बहुत सारी कम होते हैं। जो स्कैवेंजिंग बर्ड होता है इसमें दिखा गया है कि बीमारी बहुत कम है। और साथ ही साथ जो महिला इसमें काफी आमदनी घरेलू मुर्गी पालन से कर सकते हैं।
2: तो देखिए, जो व्यावसायिक तौर पर जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो दाना पानी पर, यानी मुर्गियों के भोजन पर, आहार पर खर्च होता है। तो जो घर के पिछवाड़े जहाँ तक मुर्गी पालन है तो इस मद पर कितना खर्च होता है?
3: इसमें हमें जैसा कोई भी मुर्गी जो अंडा देने वाली मुर्गी है इसमें 110 से 120 ग्राम दाना हमें चाहिए। लेकिन घरेलू मुर्गी पालन में तो मैं तो कहूंगा कि बिना खर्चे में नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो सप्लीमेंट्री फीड उसको देना चाहिए, कम से कम 25 से 30 ग्राम जो दाना है, तो हमारा 70 से 80 ग्राम जो दाना जरूरत पड़ते हैं जो इंटेंसिव में जो हम मुर्गी पालते हैं, तो वो हमारा खर्च बच जाते हैं। इसलिए ये जो घरेलू मुर्गी पालन है इसमें हमें काफी आमदनी लाभ ज्यादा होते हैं।
2: और इसको तो हम मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अपना बाहर चार ले लेते हैं।
3: हाँ, मुर्गी को छोड़ देने से उसको जितना भी उसको चाहिए, जैसा प्रोटीन है, आपको कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी अपना पूर्ति कर लेते हैं। जैसा जमीन, जो दलदला जमीन है वहाँ मुर्गी पालन नहीं करे। साथ ही साथ ये मुर्गी पालन के लिए आप मचान टाइप कुछ अगर मकान बना देते तो नमी से हम बच सकते हैं। नमी से बहुत सारी बीमारी मुर्गी में आते हैं, तो ये सारी से हम इसको मुर्गी को बचा सकते हैं।
2: चलिए, मोटे तौर पर कुछ बातें हुई घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बारे में। अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तो जैसे कि आज की हमारी चर्चा का विषय है, तो घर के पिछवाड़े अगर किसान भाई मुर्गी पालन करें तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां उपलब्ध है जिनको कि आसानी से और अच्छी तरीके से पाला जा सकता है?
3: घरेलू मुर्गी पालन में भी आपको जाति के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो में निकोबरी फाउल, इसको हम पाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें मुर्गी से अंडा उत्पादन में काफी

0: लाभ मिलते हैं। जैसे आपको सब जानते हैं कि देसी मुर्गी जो है 70 से 80 अंडा एक साल में देते हैं, लेकिन हमारे जो निकोबारी मुर्गी, इसमें जो ब्लैक किस्म का जो मुर्गी है, जो ड्यूअल पर्पस है, मीट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हमें 120 से कम से कम 140 अंडा मिल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और जो व्हाइट किस्म हम लोग डेवलप किया, इसमें 140 से 150 तक अंडा हम इससे मिल जाते हैं।
1: जो निकोबारी मुर्गी जो सफेद है, ये
0: हाँ,
1: सिर्फ अंडे के लिए है?
0: ये अंडे के लिए ज्यादा से ज्यादा आप
1: अच्छा,
0: यूज
1: और
0: कर
1: काली वाली
0: सकते हैं।
1: को अंडे
0: काली
1: और
0: वाले का
1: मांस
0: अंडा,
1: दोनों
0: मांस
1: के लिए?
0: वाला भी यूज कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: ये सारी मुर्गी जो है आप इसको बैकयार्ड में अच्छा से पाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ का लोकल मुर्गी है, तो इसमें बीमारी भी, निकोबारी फॉल में एक चीज है कि इसमें बीमारी से लड़ने का इसका क्षमता है, तो इसलिए ये किस्म जो है सबसे अच्छा है, किसान यहाँ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते
1: और
0: हैं।
1: आपने कहा ना जो देसी मुर्गियों में कुड़ूक कुछ ज़्यादा समय तक रहती है,
0: हाँ,
1: तो ये जो
0: इस
1: निकोबारी मुर्गियों में कुड़ूक की अवधि भी कम है?
0: कम है, बहुत सारी कम है। और साथ ही साथ हम जो यहाँ जो बनराजा मुर्गी है, जो
1: जी हाँ।
0: हमारा और ग्राम प्रिया एक मुर्गी है, इसको भी आप ड्यूअल पर्पस के हिसाब से किसान पाल सकते हैं, पाल रहे हैं, इसमें काफी फायदा भी हो रहा
1: अच्छा,
0: है।
1: तो वनराजा मुर्गियों के बारे में जरा बताएं ये।
0: बनराजा मुर्गी एक्चुअली ड्यूअल पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा मांस आमदनी कर सकते हैं, लेकिन
1: अच्छा,
0: इसमें क्या होता है कि दाना के लिए आपको काफी
1: खर्चा
0: खर्चा
1: करना
0: करना पड़ता
1: पड़ता
0: है। किसान को जो है ये 2 महीना में आपको 2 किलो तक इसका वजन आ जाता है, तो ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिव केयर में इसको करना है, लेकिन इसके
1: अच्छा
0: लिए संतुलित आहार देना है, उसके लिए संतुलित आहार ये, लेकिन निकोबारी निकोरो की जो मुर्गी है, इससे आप बनराजा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इतना, जितना आप इंटेंसिव में जितना इसको फायदा मिलता है, इतना फायदा मिलता नहीं, फिर भी आप ये भी आपको सक्सेसफुल। ग्राम प्रिया जो मुर्गी है, इसको भी आप पाल सकते हैं, इससे भी हम काफी आमदनी कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो है टर्की है, गिनी फॉल है, ये भी आप बाकी बैकयार्ड में पाल सकते हैं।
1: अच्छा जो आपने ग्विना फॉल की जो बात कही आपने, तो ये किस तरह से है, मतलब ये मुर्गियों की तरह
0: ये
1: होती है?
0: मुर्गी का तरह होता है, इसमें एक खासियत एक है कि ये आपको कुछ भी जो सेंटीपीड है, सांप है, इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, हमारे किसान।
1: अच्छा
0: टर्की जो है काफी बड़ा होते हैं ये, 8 से 10 किलो, इवन रिपोर्टेड है 14 से 16 किलो भी ये हो सकते हैं,
1: घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन में टर्की को भी इस्तेमाल
0: इस्तेमाल
1: किया जा सकता
0: किया
1: है
0: जा
1: और
0: सकते
1: फायदा
0: हैं,
1: हो सकता
0: हो
1: है।
0: सकते
1: चौधरी जी, आपने घर के पिछवाड़े जो मुर्गी पालन का सवाल है उसमें आज सबसे अच्छी प्रजाति जो आपने किसानों को कहा है वो है निकोबारी मुर्गी, और उसमें जो दूसरी जो जाति आपने निकाली है जो निको रॉक, ये सब बताया आपने, और
0: हाँ
1: इनमें जो प्रजनन वगैरह वो आम देसी मुर्गी की तरह अंडे रखकर कुड़ूक बैठाकर किया जा
0: हाँ
1: सकता
0: कुड़ू
1: है?
0: बुटा के इसको कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन वगैरह करने के लिए मैं किसान से एक सलाह दूं कि जो अंडा है, जो मुर्गी अच्छा अंडा देती है, जब से कोई गवर्नमेंट फार्म से लेने से कुछ बात नहीं है, लेकिन कोई फार्मर्स के पास से जब आप मुर्गी लेंगे, तो इसको आपको फास्ट हिस्ट्री थोड़ा सा देखना है कि वो जो मुर्गी कितना अंडा देती थी,
1: अच्छा
0: उससे लेके बच्चा बनाने से उससे आपको पैदावार ज़्यादा आपको मिल सकते हैं।
1: अच्छा चौधरी जी, बात आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि आमतौर पर जो किसान भाई हैं जो अगर बच्चे निकालना चाहते हैं तो ये तो जस्ट मुर्गी अंडे जमा कर लेते हैं और मुर्गी को कुड़ूक में बैठा लेते हैं, वो तो ये नहीं देखते कि कौन सी मुर्गी से अंडा लिया है, तो इस तरह देखने से भी फायदा होगा?
0: फायदा होगा, तो अंडा को भी ज्यादा दिन, पुराना अंडा नहीं होना है, 4-5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक आप अंडा को रखिए, अंडा का शेप साइज जो है वो अच्छा होना चाहिए, वजन ठीक होना चाहिए, उसको हल्का से सफाई करके इसको रखना जरूरी है। साथ ही साथ आप जब मुर्गी कुड़ोक में बैठाएंगे तो आप उसको लिए कुछ खरपतवार जैसा पुआल वगैरह देना है, उसका नीचे जो समालू पत्ते लोकली अवेलेबल है, नहीं तो सूखा का पत्ते भी कोई कोई दे रहे हैं, तो मुर्गी में, क्योंकि काफी दिन से मुर्गी जब रहते हैं, तो इसमें एक तो पैरासाइट्स जो है,
1: अच्छा
0: जो टिक्स होता है, ये होता है, तो उससे आपको जो कुड़ूक वाला मुर्गी है इसे आप बचा सकते हैं, और जो इसको हैंडल कर, तो उसको भी थोड़ा सा परेशानी हो सकते हैं ये जो जुआ वगैरह से, तो ये सारी सावधानी लेके ये
1: सूखा
0: लोग
1: पत्ती
0: अगर
1: या
0: सूखा
1: संभालू पत्ती
0: पत्ते और
1: वगैरह रख देगा तो ये
0: हाँ,
1: कम
0: तो
1: होता है।
0: कुड़ूक में बैठा के अच्छा अंडा बैठा के उसको आपको अच्छा फल मिल सकते हैं।
1: चलिए, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि चौधरी जी ने जो बातें आपको बताई, खासतौर पर घर के पिछवाड़े जो मुर्गी पालन में आप निकोबारी मुर्गियां और जो संबंधित दूसरी मुर्गियां हैं उनको पाल सकते हैं, टर्की पालन भी कर सकते हैं। चौधरी जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप घर के पृष्ठ भाग में यानी घर के पिछवाड़े में पालने वाले मुर्गियों की नस्लों के बारे में एनसी चौधरी से की गई ये खास बातचीत सुन रहे थे। साथियों, अब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। साथियों, उम्मीद है इस गीत ने आपके मन को छू लिया होगा।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक जानकारी।
2: फसल को कीट और रोगों से बचाकर रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं। इन रसायनों के उपयोग से खेत की जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। ऐसे में किसान रसायनों को छोड़कर नीम एवं ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब आपको बता दें कि नीम का प्रयोग कैसे करें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को जैविक विधि से खेती करनी चाहिए। इस विधि में अगर नीम के पत्ते, नीम की खली और नीम के तेल का प्रयोग करेंगे तो किसान अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचा सकेंगे। इस तरह फसल से काफी शुद्ध अन्न की उपज प्राप्त होगी। साथ ही

0: यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर फसलों पर कीटों का प्रकोप हो गया है तो सबसे पहले नीम के पत्ते को ठंड में सुखाकर रात भर पानी में डुबा कर रखें। इसके बाद उस पानी को पौधों पर छिड़क दें। इस तरह फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि बैंगन के पौधों को तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बैंगन के पौधों पर नीम के तेल का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि अगर किसान 1 हेक्टेयर खेत में रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उनका कम से कम 1,000 रुपये खर्च होता है। इसके साथ ही रासायनिक कीटनाशकों से फसल का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी को भी हानि पहुंचती है। लेकिन फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए नीम बहुत अच्छा उपाय है। गांव में नीम आसानी से मिल जाता है। अगर किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाएं। नीम का कीटनाशक बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार से है। नीम की पत्ती, खली और इसके तेल की जरूरत होगी। नीम से कीटनाशक बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को एकत्रित कर उन्हें छाया में सुखाएं। पत्तियों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर उन्हें पर्याप्त पानी में रात भर डुबाकर रखें। इसके बाद नीम की पत्ती वाले पानी का छिड़काव पौधों पर करें। इस छिड़काव के बाद फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की खली कैसे बनाएं। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होगी वो इस प्रकार से है। 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली या 5 किलोग्राम निबोली की खली। सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर इससे करीब 3 लीटर अक्र निकाल लें। अगर 1 लीटर कीटनाशक है तो आपको करीब 20 लीटर पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद तैयार मिश्रण को आप अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव के बाद 1-2 दिन में ही इसका असर नजर आ जाएगा।
1: साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे। किसान साथियों, आइए अब हम आपको मौसम पर आधारित कृषि परामर्श दे दें।
2: किसान भाइयों, मौसम संबंधी अनुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, जो अगले 48 घंटों में और गहरा हो सकता है। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों के दौरान हमारे इस द्वीप समूह में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर सहित पूर्वी तटीय इलाकों में लगातार भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। साथियों, इस मौसम में कृषि कार्यों पर जो काम किए जा सकते हैं, कुछ जरूरी सलाह आपको दी गई है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, फसलों की कटाई, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, इसलिए यदि खरीफ फसलें जैसे शुरुआती धान, मक्का पक चुके हैं तो तुरंत कटाई कर ले और सुरक्षित स्थान पर रख दे। साथियों, भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो सकता है। धान, सोयाबीन, कपास और सब्जी के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध रखें ताकि फसलें गल न जाएं। सिंचाई और खाद के बारे में ये बताया गया है कि अचानक तेज बारिश की संभावना है, इसलिए अगले 3-4 दिनों तक फसलों में किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव या यूरिया खाद डालने का काम रोक दें। कीटनाशक छिड़कावों के बारे में भी यही सलाह दी जाती है कि उमस और नमी से कीटों का खतरा है। हवा में नमी बढ़ने से फसलों में कीट और बीमारियां बढ़ सकती है। मौसम साफ होने पर ही कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान साथियों, विशेष सावधानी के तौर पर बताया जाता है कि तेज आंधी की चेतावनी को देखते हुए बारिश के समय किसान भाई खेतों में काम करने से बचें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। किसान साथियों, मौसम साफ होने पर ही खेतों में और समुद्र में जाएं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखना जरूरी है।

किसान साथियों, ये था मौसम पर आधारित कृषि परामर्श जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। किसान भाइयों, जैसे कि हमने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था, उड़द में बुवाई के लिए कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, उड़द में बुवाई के बाद तीसरे या चौथे सप्ताह में पहली निराई गुड़ाई तथा आवश्यकता अनुसार 40 से 50 दिनों बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उम्मीद है साथियों, आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: तो किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब दीजिए अपनी दोस्त रागनी को इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूं अंकित कुलश्रेष्ठ, समाचार संपादक आकाशवाणी श्री विजयपुरम। आज का यह कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे मेक इन इंडिया की एक ऐसी पहल की जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में निवेश, नवाचार, कौशल विकास
2: और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
1: लेकिन हम आज हमारी चर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश प्रभारी श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार
1: कुलकर्णी जी, सबसे पहले हम हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि मेक इन इंडिया की मूल अवधारणा क्या है।
3: ऐसा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद उन्होंने देश को ये संदेश दिया कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि देश किसी भी चीज में, किसी भी सामग्री में अन्य देशों पर अवलंबित न हो। तो अवलंबित न होगा तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी भारत में बनाएंगे, और भारत में बनाने का मतलब है मेक इन इंडिया। हम अपने देश में ही अलग अलग चीजों का उत्पाद करेंगे,
1: इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा आगे चल के।
3: इसके ऐसा है कि मैं शुरू में ही आपको दो उदाहरण देता हूं। हम सबको पता है कि बहुत साल तक हम

0: जो हमारा डिफेंस सेक्शन है, सुरक्षा, उसमें हम काफी वेपन्स में अन्य देशों पर निर्भर थे। लेकिन पिछले 12-13 साल के माननीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत एक ऐसा देश बना, वो खुद का तेजस भी बना रहा है फाइटर जेट, वो खुद के सुरक्षा यानी संरक्षण डिफेंस वेपन भी बना रहा है। इतना ही नहीं कि डिफेंस जो वेपन बन रहे वो वेपन भी इंडिया यानी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले 13 साल के माननीय मोदी जी के कार्यकाल की है। साथ साथ आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो विदेश के लोग ये कह रहे थे कि भारत में बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग मर जाएंगे, हाहाकार मचेगा। तो विद इन 6 मंथ मोदी जी कोरोना काल में उन्होंने दौरा किया, वो पुणे में गए, वो बेंगलोर में गए, उन्होंने सारे साइंटिस्ट से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश का वैक्सीन चाहिए, क्योंकि हम दूसरे देश से वैक्सीन मांग रहे थे, वो वैक्सीन महंगा भी था और पता भी नहीं था वैक्सीन कैसा है क्या है। तो शास्त्रज्ञों ने, साइंटिस्ट ने मोदी जी की बात मानी। 6 महीने में कोरोना काल में हमने अपने देश का, अपने साइंटिस्ट द्वारा अपना वैक्सीन बनाया। और मुझे कहने में ये बिल्कुल गर्व की बात है कि देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, सभी को प्रधानमंत्री के माध्यम से वैक्सीन मुफ्त में मिला, जिसमें आपको भी मिला और मुझे भी मिला,
1: दूसरे देशों को भी मिला।
0: दूसरे देशों को तो मिला ही मिला, लेकिन करोड़ों जान बचाने का काम जो मोदी जी ने किया और दुनिया के जो 70 गरीब देश है उनको भी मोदी जी ने अपना वैक्सीन मुफ्त में भेज दिया और बाकी लोगों को थोड़ा बहुत पैसा लेके भेजा। इसको कहते हैं मेक इन इंडिया।
1: इसके साथ सबसे बड़ा इनोवेशन अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है,
0: वो तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मेक इन इंडिया जो है इसमें हम आत्मनिर्भर की कल्पना लेके जा रहे हैं। और जो 2047 का मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आ जाएगा, मोदी जी ये नहीं कहा कि तब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, उन्होंने युवाओं को ये संदेश दिया है कि इस प्रकार का काम करो कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 13 साल में जो काम हुआ है उसके आधार पर भारत 2047 में यानी आजादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा। अभी मैं अंडमान निकोबार में पिछले 2.5 साल से आता हूँ, मैंने पूरा प्रवास किया है। मैं निकोबार आइलैंड गया हूँ, मैं कैम्बल में गया हूँ, मैं दिगलीपुर गया हूँ, मैं कदमताला गया हूँ, मैं रंगत गया हूँ, माया बंदर गया हूँ, हडबे गया हूँ, कामोठा गया हूँ। और मुझे इतना आनंद होता है, कामोठा हो या कैम्बल बे हो, इतने छोटे वहाँ पे आइलैंड है। मैंने आपके कैम्बल बे के पांचों के पांच पंचायत में मैं जाके आया हूँ, वहाँ लक्ष्मी नगर है और भी नगर है, 5 पंचायत है। और मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पे वो जो सुबह उठ के मुझे चलने की आदत है, अभी भी देखा मैं टैक्स पे हूँ, तो वहाँ जब मैं चाय पीता हूँ किसी दुकान में तो उसके पास भी QR कोड होता है। अब ये QR कोड भारत में बना और दुनिया में सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन करने वाला देश अपना भारत देश है और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन QR कोड से हो रहा है। आपको जेब में पैसे डालने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि 2015 में ये जब विषय संसद में आया पार्लियामेंट में तो चिदम्बरम जी ने खड़े होकर कहा अरे अपने देश के तो लोग अनपढ़ है, उनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, देखने नहीं आता है, QR कोड क्या करेंगे। लेकिन हमने ये QR कोड तो बनाया, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हो रहा है और अपना जो हमने जो बनाया है वह डिजिटल माध्यम और देश अपने देश से मांग रहे हैं, हम उनको देश को हम दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं।
1: सही।
0: ये सब हम क्यों कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से कर रहे हैं। यानी मुझे आनंद इसलिए होता है कि ये कैम्बल बे के लक्ष्मी नगर में रहने वाले या कैम्बल में रहने वाले छोटे व्यापारी, वहाँ तो कोई बड़ा ही नहीं है, QR कोड लेके बैठा है वहाँ। और ये कारण ये है कि आज तक पिछले 60 साल में मात्र, आप भी जानते हैं कितने लोगों के बैंक खाते थे, आज कितने लोगों के बैंक खाते हैं, इसका कारण QR कोड है। देश की जनता शिक्षित है, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अभी आप कहीं भी जाओ, देश के रास्ते कैसे अच्छे बन रहे, रास्ते अच्छे बनना ये मकसद नहीं है। जब रास्ता अच्छा होता है तो आपका पेट्रोल या डीजल कम जाता है, आपके गाड़ी का मेंटेनेंस कम होता है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, आप बच्चों को स्कूल में जल्दी पहुंचाते हैं, आपकी एम्बुलेंस जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचती है। अच्छे रास्ते बनाने का मतलब ये है और ये मोदी जी के दिमाग में।
1: इसके साथ ही जैसे आपने बोला कि PM गति शक्ति

0: योजना जो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, जिसका उद्देश्य था मतलब कि उस पर आपके क्या विचार है? जैसे कि पहले क्या होता था कि रेल नेटवर्क है तो रेल नेटवर्क के लिए पहले अलग से पारित होता था, उस पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत ऐसा था कि सारे जितने काम है उनको समावेशी कर दिया गया, जैसे हाईवे बन रहा है तो उसी के नीचे लाइन बिजली की बना दी गई, इससे गवर्नमेंट का खर्चा भी कम हुआ।
1: ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में किसी किसान को, किसी बच्चे को, किसी हमारे बहनों को तहसील कचहरे में जाके अनुदान के लिए, सब्सिडी के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे और पूरा का पूरा अनुदान कभी नहीं मिलता था
0: जी।
1: वो मैं राजीव गांधी का उदाहरण तो सब लोग देते हैं, मैं देना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि वो उदाहरण बहुत पुराना हो गया, लेकिन आज देश इतनी प्रगति कर रहा है कि आपको 100% सरकार का जो आपका अनुदान है, सब्सिडी है, वो आपके खाते में 100% आ रही है। ये गतिशक्ति का भी एक विषय है
0: जी, जी जी
1: और गतिशक्ति ये मात्र नाम नहीं है। हर एक सांसद को ये कहा गया है कि आप शक्ति की मीटिंग अपने अपने जिले में जाके करो कलेक्टर के साथ
0: जी।
1: इसका मतलब क्या है कि मोदी जी फॉलोअप करना भी जानते हैं
0: जी,
1: काम कहाँ तक आया है, किस डिपार्टमेंट का काम कहाँ तक आया है, और हर 3 महीने के बाद ये गतिशक्ति की मीटिंग दिल्ली में होती है और मोदी जी ने सभी सांसद को कहा है कि आप आपके क्षेत्र में जाके कलेक्टर के साथ बैठकर ये शक्ति के माध्यम से आप मीटिंग करो, काम जो बोला था वो कहाँ तक आया, काम पूरा क्यों नहीं आ रहा है, उसमें क्या अड़चन है क्या नहीं, ये सारी बातें मोदी जी ने गतिशक्ति के माध्यम से कर रही है। अभी हम तो अंडमान निकोबार में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का एक सपना है कि भाई देश सुरक्षित होना चाहिए और लगभग आज देश सुरक्षित है। वो सुरक्षित पीछे की भावना रखकर ही मोदी जी ने ये कैम्बल बे में जो ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़ा पोर्ट आ रहा है, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं तो मुझे पोर्ट क्या है चीज पता है। मुंबई में JNPT पोर्ट है और वाडा में दूसरा बड़ा पोर्ट आ रहा है। ये पोर्ट जब कैम्बल में आएगा, काम शुरू हो जाएगा, तो दुनिया के नक्शे पर अंडमान निकोबार जैसा प्रदेश नहीं होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, देश की प्रगति के लिए हम सब कर रहे हैं, लेकिन देश की जब प्रगति मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है, NDA के कार्यकाल में हो रही है, ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का मतलब ही है कि देश की सुरक्षा, रोजगार बढ़े, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के संसाधन आ जाए। और मेरा पूरा विश्वास है ये प्रोजेक्ट पूरा होते होते अंडमान निकोबार में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। और हमने सरकार से आग्रह किया है पार्टी के नाते कि इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और वो देने की उन्होंने पूरी तरह से हमको गारंटी दी।
0: इसके साथ ही मैं आपसे, जैसे आपने अभी रोजगार की बात की, तो मेक इन इंडिया के साथ विकास के साथ अगर पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की बात करें तो वो कैसे बनाया जा सकता है?
1: ऐसा है, अभी हमने जो प्रोजेक्ट लिया है एक पेड़ माँ के नाम
0: जी,
1: इसका मतलब क्या है, पर्यावरण संरक्षण ही है ना
0: जी। जी
1: अभी मैं अंडमान निकोबार आता हूँ और मैं जब पानी की बोतल मांगता हूँ तो मुझे 2 लीटर की बोतल मिलती है, छोटे बोतल नहीं मिलते प्लास्टिक के, ये पर्यावरण संरक्षण है क्या
0: जी,
1: है ना। तो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी नए नए फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं देश में, देश में बाघों की संख्या बढ़ गई, देश में नए नए प्रकार के जानवरों की संख्या बढ़ रही है, ये पर्यावरण संरक्षण है तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण ही है।
0: सही कहा आपने। अब हम बात करते हैं कौशल और प्रशिक्षण की, क्योंकि किसी भी उद्यम की सफलता में सही कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका हो, तो रोजगार के अवसरों के लिए किस प्रकार की कौशल प्रशिक्षण का हमको ध्यान देना चाहिए?
1: अभी देखो आप, यहाँ तो रेलवे नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी ने ये जो वंदे भारत लाई है
0: जी,
1: ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। अभी इसके कारीगर कहाँ से आए, कौशल विकास से आए
0: जी,
1: जैसे फाइटर जेट बनाए कौशल विकास से आ गए, और जो सारी चीजें सेमी कंडक्टर वगैरह बन रहा है, और हार्डवेयर में तो भारत बहुत बड़ा है, भारत का हार्डवेयर पूरे दुनिया में जाता है, ये कौशल विकास से जाता है। इसके बावजूद भी जो छोटी छोटी चीजें हम बनाते हैं, जो मशीनरी बनाते हैं, वो भी कौशल विकास से ट्रेनिंग लेके लोग आगे बढ़ते हैं। और कौशल विकास का मतलब ये है कि आपके पास जो भी कला है, भले आप अनपढ़ है, लेकिन आप कौशल विकास में आके 3 साल का ट्रेनिंग लो, 6 महीने का ट्रेनिंग लो, और उसमें से बहुत सारे युवाओं ने, युवतियों ने अपने अपने दुकान निकाले कौशल विकास। गवर्नमेंट फोन पर प्रोवाइड करती है, आपकी संस्था यदि कौशल विकास सेंटर चलाते हैं तो आपको उसका रेंट भी मिलता है
0: जी।
1: हर विद्यार्थी के पीछे कुछ पैसा भी मिलता है, ये नहीं कि आप सेंटर निकालो आप सब कुछ, और ऐसा नहीं है। कौशल विकास का मतलब आप में जो कुशलता है उसका पूरी तरह से देश में उपयोग करना चाहिए, उसके पीछे की ये भावना है।
0: अगर कोई स्थानीय उद्यमी अपने उत्पाद को अंडमान से बाहर राष्ट्रीय बाजार तक ले जाना चाहता है तो उसे किन चरणों

0: ऐसा है कि मैं अभी दो दिन तीन दिन निकोबार गया था और मुझे पता चला कि केरल के बाद निकोबार में सबसे नारियल और सुपारी का उत्पादन होता है और बहुत सारे नारियल जो है कभी कभी वो खराब हो जाते हैं। तो वहां पे हमने ये बात की कि भाई आप इसका जो तेल निकालते हो वो तेल अच्छी तरह से निकालो, वहां पे कोई अच्छी मशीनरी वगैरह आएगी तो मशीनरी से तेल निकालेंगे तो और अच्छा जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उसका मार्केटिंग के दृष्टि से ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर देश भर में है वहां बात हो सकती है कर सकती, तो वहां के लोगों के साथ मैंने बातचीत की, ट्राइबल काउंसिल पे मेरे साथ मीटिंग हो गई, 100% ट्राइबल काउंसिल के लोग आए थे और हमने उनको ये सुझाव दिया है कि आप नारियल का तेल और सुपारी ये सारे उत्पादन जो है वो उत्पादन इकट्ठा करके आप सुपारी तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको भी ज्यादा रेट देने के लिए केंद्र सरकार के पास हमने मांग रखी है कि सुपारी को उचित भाव मिले और नारियल का तेल, अंडमान का नारियल का तेल पूरे देश भर में हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, कैसे सप्लाई चेन बना सकते हैं, उस पर भी यहाँ कुछ उद्यमों से हम बात कर रहे हैं। कल ही मैंने एक दो लोगों से बात की यहाँ पे जो नारियल का तेल बनाते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम निकोबार में कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाओ, उचित स्थान पर हम बातचीत कर लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ये भी कहा है। अभी जैसे कल मेरे यहाँ पे माननीय दिनेश शर्मा जी नए LG आए, उनसे भेंट करके मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि यहाँ पे स्थानीय रोजगार बढ़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मछुआरे हैं, मछुआरों को हम डीजल में सब्सिडी दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी यदि फिशरीज यूनिवर्सिटी होगी तो फिशरीज यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम अपना उत्पाद और जगह कैसे ला जा सकता है और उसकी ट्रांसपोर्ट की कीमत कैसे हो सकती है, उस पर कुछ सरकार सब्सिडी दे सकता है क्या, ये भी हमने बात की। जैसे यहाँ पे आपके क्रूज है तो क्रूज के दृष्टि से कौशल विकास केंद्र के दृष्टि से हम कुछ यहाँ सेंटर चला सकते हैं क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये क्रूज वाले प्राइवेट वाले होते हैं, कभी कभी उनकी मोनोपोली होती है, सो इससे अच्छा क्रूज रिपेयर करने वालों का हमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला सकते हैं क्या
1: जी?
0: उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये सारी बातें कल LG से हमने बैठ के बातचीत की है और LG भी अच्छा है, सकारात्मक है और उन्होंने कहा कि हम आस्ते आस्ते इस सारे विषय पे ध्यान देंगे।
1: अच्छी बात आपने कही स्किल डेवलपमेंट को लेके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का जो विजन है उसमें वीगन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आपकी जो सरकार है वो देखती है?
0: देखो सरकार तो सरकार है
1: जी,
0: मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ
1: जी
0: और सरकार के अच्छे काम का प्रचार करना मेरा काम है
1: जी।
0: जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि संरक्षण उत्पादन में यानी डिफेंस वेपन में भारत इतना आगे बढ़ा है, यानी खुद का फाइटर जेट बनाना है कोई मामूली बात नहीं है, हमने बनाया, खुद का हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं अभी बड़ौदा में, नागपुर में बोइंग जो बड़े विमान है जो अभी बाहर से हम लाते हैं उनका कारखाना बन रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं इसका एकमात्र कारण ऐसा है कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, हम दूसरे देश पे किसी भी विषय में अवलंबित ना रहे, इसका मतलब है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर भारत कहाँ से आता है, वो मेक इन इंडिया से आता है, लोकल फॉर ग्लोबल, ये जो ये है नारा है हमारा कि हमारी चीजें दुनिया के बाजार में जानी चाहिए और दुनिया वाले अभी भारत से चीजें मांग रहे हैं। आपने देखा ये सऊदी भी मांग रहा है, कुछ जापान भी मांग रहा है और कुछ लोग मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत इसका ही मतलब है, हम अपने देश में चीज बनाएंगे और दूसरे देश हमारे देश से वो लेंगे, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो किसी भी देश का विकास अच्छी तरह से होगा,
1: जीडीपी बढ़ेगी।
0: अभी देखो GDP 7.8 है, यहां तक नहीं थी कभी। अभी ऐसा ये सारे विषय हम क्यों ला रहे हैं, देश के विकास के ला रहे। अटल जी हमेशा ये कहते थे कि हाँ देश रहना चाहिए और वही सपना लेकर माननीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है, राष्ट्र प्रथम। लेकिन मैं सावरकर के भूमि पे बैठा हूँ, यहाँ पे सेल्यूलर जेल है जहाँ पे वीर सावरकर जी थे और मैं आखिर में इतना ही आपको बोलूंगा कि वीर सावरकर जी का ये कहना था जो मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं, वीर सावरकर जी ने कहा था कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और आगे सावरकर जी ये कहते हैं कोई हमको छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: कुलकर्णी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं के साथ मेक इन इंडिया और अंडमान निकोबार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं आज की बातचीत में हमने समझने का प्रयास किया कि मेक इन इंडिया की व्यापक सोच को अंडमान और निकोबार की स्थानीय परिस्थितियों, युवाओं, महिलाओं, छोटे उद्यमों, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल में निवेश, नवाचार, कौशल विकास

0: और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। और इसी भावना के साथ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूं अंकित कुलश्रेष्ठ, समाचार संपादक, आकाशवाणी श्री विजयपुरम। सुनते रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम। नमस्कार।
1: अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे, सेवा संकल्प अभियान के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:47 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 18वीं कड़ी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर

0: ताने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदि हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है? ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज ये है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 18वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र

से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए चित्रपट संगीत रात 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार। FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे रात 10:00। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम और रात 10:00 जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:23 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्रीटिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा केले के रोग व रोकथाम।

कार्यक्रम सुनिए 6:10 पर, 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा प्यार शीर्षक पर। रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर, 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा।

देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी 7:15 पर। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल सुबह 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनिए हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। इस विषय पर जानकारी देंगी जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप राधा सलूजा और कमलिनी मल्होत्रा को सुन पाएंगे। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 10:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा कशिश गीत गुंजन। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा

कल दिन में 11 बजे, 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए गीत अतीत। दोपहर 12 बजे समय रहेगा तेलुगु कार्यक्रम का। दोपहर 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर पॉडकास्ट सीरीज के तहत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 13वीं कड़ी आप सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नॉनस्टॉप म्यूजिक। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप प्रसिद्ध गीत सुन पाएंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए बहारों की शाम। शाम 5 तमिल कार्यक्रम होगा। 5:30 पर आप बंगला कार्यक्रम सुनेंगे। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6 सिपीघाट निवासी श्री शिवराम से की गई बातचीत का विषय रहेगा दुग्ध उत्पादन फायदे का व्यवसाय। 6:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में नेल्सन पॉल टोपो की वार्ता सुनिए, द एंकर इन द स्ट्रॉन्ग, व्हाई वी नीड हॉबीज। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। युवाणी में 7:30 पर कार्यक्रम सुनिए बातें मुलाकातें। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8। 8:30 पर रोजगार समाचार। रात 10 FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर बल दिया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत 9 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान अक्टूबर से शुरू होगा। मेरा युवा भारत की हिंदी संगोष्ठी में पद्मश्री नरेश चंद्र लाल ने स्वच्छता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। और दक्षिण अंडमान में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 28 सितंबर से शुरू होगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया से उत्पादन, निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2014-15 के 1,90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13,11,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में रक्षा उत्पादों का घरेलू उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार यह केंद्र प्रायोजित योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक है। योजना में शामिल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 वर्ष के लिए 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में आज स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप महानिदेशक सी सुब्बाराव, उप निदेशक डी नरसिम्हा और सहायक निदेशक दीपक चंद्र तिवारी सहित आकाशवाणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और परिश्रम में श्रमदान किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की। इस दौरान सभी ने स्वच्छता शपथ

भी ली, जिसमें महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने, स्वयं स्वच्छ रहने और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। शपथ में हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने, अपने घर, परिवार, मोहल्ले, गांव और कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करने तथा गंदगी ना करने और ना करने देने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा स्वच्छ एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है हिंदी पखवाड़ा और बैडमिंटन टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मेरा युवा भारत श्री विजयपुरम की ओर से हिंदी पखवाड़ा 2026-27 के अवसर पर महाराष्ट्र मंडल सभागार में हिंदी संगोष्ठी और नारा लेखन, कविता तथा पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं से स्वच्छता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने का आह्वान किया। सेवानिवृत्त अधिकारी गोविंद राम ने दैनिक और कार्य संबंधी कार्यों में सरल हिंदी के आधिकारिक प्रयोग पर जोर दिया। JNRM की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मंजू नायर ने साहित्य के महत्व पर विचार व्यक्त किए। शराब और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन और खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय की ओर से DCSP कब बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शाम 5 से रात 9 बजे तक नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देश्य सभागार में होगी। इस प्रतियोगिता में ओपन पुरुष, महिला, बालक और बालिका डबल्स मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान शाखा द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पर 3 जिलों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के PGT, GTT और PET के लिए 3 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन राजकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अबडिन श्री विजयपुरम के सभागार में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज शिक्षा निदेशालय के निदेशक आदित्य संगोत्रा द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि ने बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उनके समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अधिक जागरूकता और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। JNRM कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग और NSS यूनिट 1 की ओर से 9 से 19 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस दौरान स्लोगन लेखन, वॉकाथॉन, क्विज, पोस्टर निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मोटापे और कुपोषण के प्रति जागरूक किया। समापन अवसर पर JNRM की प्राचार्य डॉ. पल देवदास ने पोषण अभियान की शपथ दिलाई। बिजली विभाग ने मुर्दाखाड़ी के पास HT केबल में ज्वाइंट बदलने और शिवाजी कॉलोनी ग्यारहचरमा के पास LT लाइन स्थानांतरित करने के कारण कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखने की सूचना दी है। इससे लक्ष्मी मोटर, शिवाजी कॉलोनी, TR हाउसिंग, MR हाउसिंग, ग्यारहचरमा बस्ती, सुसान रोज, ग्यारहचरमा मेडिकल, काली मंदिर, TTI रोड, पंप हाउस, मुर्दाखाड़ी, IMFC एजेंसी हाउस, ग्यारहचरमा और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। विभाग ने बताया कि काम निर्धारित समय से पहले पूरा होने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अंडमान विधि महाविद्यालय और कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में अंतिम वर्ष के विधि विद्यालयों के लिए

आयोजित 3 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संपन्न हो गया। शनिवार को आयोजित 12 ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संबंधित कानूनों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायतों की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उपभोक्ता मामलों में व्यवहारिक जानकारी और पेशेवर नैतिकता से अवगत कराया। समापन सत्र में कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. PVVS मूर्ति ने अंडमान लॉ कॉलेज के सहयोग से राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की घोषणा की। निकोबार डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय ने GNI परियोजना के तहत विभिन्न संरक्षण योजनाओं और उनकी निगरानी के लिए तकनीकी कर्मियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इच्छुक पात्र उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर बल दिया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत 9 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान अक्टूबर से शुरू होगा। मेरा युवा भारत की हिंदी संगोष्ठी में पद्मश्री नरेश चंद्र लाल ने स्वच्छता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। और दक्षिण अंडमान में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 28 सितंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शनिवार 26 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 27 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी सेंटिनल कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर जाएगा और ये जलयान अगले दिन 27 सितंबर को शाम 4 बजे कार्निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानी चंगा स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी कमोटा के बदले में अब एमवी वंडूर शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत के स्थान पर अब एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 26 तारीख को श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान अगले दिन 27 सितंबर को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा तथा ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:00

30 मिनट पर स्वराजदेव से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और इसकी वापसी दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बम्बुका के बदले एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे अपनी यात्रा आरंभ करेगा तथा इस जलयान की वापसी अगले दिन 27 सितंबर को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही सूचना समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म फिजा से। आवाजें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की। अनु मलिक का संगीत था, गुलजार के शब्द थे। आइए अब सुनते हैं मस्ती फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद ने, समीर के बोल हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारत के महान विचारक, समाज सेवी और राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया।

0: आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो फ्रेंड्स।
1: जय माता जी।
0: जी नमस्कार, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी।
1: और मैं आपसे जुड़ गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, गांव का नाम अंशमल बुगला से बात करा मैडम।
0: जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ,
0: जी
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी मैडम यहाँ मौसम में ऐसा हो रहा है कि अभी धूप है काफी।
0: जी जी जी जी
1: और
0: चलिए
1: आपके
0: ठीक।
1: उधर?
0: जी यहाँ पर तो मौसम आज थोड़ा सा साफ है।
1: जी मैडम,
0: जी जी जी तो ठीक है, अब आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे पूरन वर्मा जी?
1: फिल्म का नाम है तलाश
0: जी
1: और उसमें तूने कहा जब से आई ये लब मुस्कुराने लग गए।
0: जी और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम सबसे पहले तो आप हैं,
0: जी
1: वो शिवा लोहार है
0: जी
1: और मेरा दोस्त है पूर्णिमा मैडम जी है, विजयपुरम से ही है,
0: जी जी जी
1: दीपाली जी है वो महाराष्ट्र से,
0: जी जी जी
1: और स्वाति जी और जितने भी कॉलर सुनने वाले तमाम के लिए।
0: जी तो ठीक है, आप हमसे जुड़े काफ़ी अच्छा लगा हमें, और अभी हम कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो
0: जी.
1: फ्रेंड जी, नमस्कार मैम.
0: जी नमस्कार. मेरी किनसे बात हो रही है?
1: हाँ जी, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से.
0: अच्छा, भोपाल से हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप.
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और हमारे परिवार वाले भी, जितने भी हमारे
0: जी.
1: भैया भाभी परिवार में मेरे बच्चे हैं, हमारे सब आनंद मंगल में हैं.
0: अरे
1: और
0: वाह रे वाह.
1: आपके आकाशवाणी

0: अपने विजयपुरम को सुनते रहते तो रहते हैं।
1: जी जी जी हमें काफी अच्छा लगा ये सुन के। वैसे आप भोपाल से हैं, तो क्या आप हमें और हमारे श्रोताओं को वहाँ की कुछ खास जगहों के बारे में या कुछ खास पकवान जो सिर्फ भोपाल में मिलते हैं आप अगर बताना चाहें?
0: जी, पकवान तो ऐसा है कि हर शहर हर राज्य में अलग अलग अपने पसंद से सब होते हैं और सब टेस्टी बनाते हैं, अच्छे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ जी, भोपाल में जो भी है सभी चीज, जो भी खाने पीने की चीज अच्छी बनाते हैं। और जैसे यहाँ भोपाल में अगर घूमने के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे झीलों की नगरी भोपाल शहर है। यहाँ पे तो यहाँ पे तालाब घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे, जैसे नाव से घूमना चाहो तो ऐसे भी घूम सकते हो आप यहाँ पे। और भी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। संग्रहालय है यहाँ पे, विज्ञान भवन है यहाँ पे, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। मतलब मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन ये घूमने जाओ तो बहुत
1: बहुत
0: कुछ
1: सारी जगह है। अच्छा अच्छा जी जी हमें काफी अच्छा लगा। जी
0: हाँ जी, वन विहार भी है यहाँ पे
1: अच्छा
0: घूमने के लिए।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी, परिवार को हम ले जाते हैं संडे या कभी भी, जब भी हमको समय रहता है
1: जी जी
0: तो हम घूमने के लिए जाते हैं परिवार के साथ
1: अरे
0: में।
1: वाह अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपका धन्यवाद
0: और
1: कि जी जी
0: हाँ जी बिल्कुल। और अपने जैसे विजयपुरम आकाशवाणी से जो वो जो प्रोग्राम आते हैं ना, अपने ये प्रोग्राम 7:30 बजे अपने कोई प्रसारण करते हैं युवाणी,
1: जी
0: ये प्रोग्राम तो हम बिल्कुल बराबर सुनते रहते हैं और हम घर पूरे परिवार को बहुत पसंद है ये। आपको
1: जी जी कैसा लगता है
0: इतना भी
1: आपको हमारा ये युवाणी कार्यक्रम?
0: युवाणी बहुत बहुत अच्छे से लगते हैं, और आप लोग जितने भी आते हो और जितने युवाणी में जो
1: जी
0: प्रोग्राम पेश करते हो बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी जो
1: जी जी
0: बातचीत है घर परिवार के बारे में,
1: जी
0: खाने के पकवान के बारे में,
1: जी जी
0: रिश्तेदारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आप
1: जी
0: जो भी अलग अलग जो 7 दिन जो भी प्रोग्राम आते हैं अपने,
1: जी
0: वो
1: जी
0: प्रोग्राम सुनते बहुत अच्छे लगते हैं।
1: आप ये प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा
0: हाँ
1: लगा
0: जी
1: कि जी जी और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और हम आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपके जानकारी के लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके लिए पेश करते रहें। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी आपसे
0: बिल्कुल
1: बात
0: बिल्कुल
1: करके काफ़ी अच्छा लगा। अब समय हो चला है कि हम आपसे जानें कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: तो आज की युवाणी में हम सुनना चाहेंगे फिल्म बागवान का, मेरी मकड़ा मेरी सोनी।
1: जी जी बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना और ये प्यारा सा गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: हाँ जी, हमारे घर परिवार में हमारे मिसेस है, भैया
1: जी
0: भाभी है, सबके साथ में सुनेंगे।
1: जी
0: और हमारे मित्र है लोकेंद्र वर्मा जी,
1: अच्छा जी जी
0: उज्जैन उज्जैन महाकाल से,
1: जी
0: बहुत अच्छे और प्रिय दोस्त है हमारे।
1: जी जी
0: हाँ जी, और आप सुनाओगे तो आप भी सुनोगे ये प्रोग्राम,
1: जी
0: और आपकी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे प्रोग्राम देने के लिए।
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: दिल से अच्छे प्रोग्राम
1: जी
0: देते हो
1: आप
0: आप।
1: लोग हैं तभी हम हैं, तो आप जैसे श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमसे लगातार जुड़ते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं जो भी हम लाते हैं और से जानकारी प्राप्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: जी तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा हमें राम बाबू जी, और अब हम आपको आपका ये मनचाहा गीत भिजवा रहे हैं भोपाल। लीजिए सुनिए।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो मैडम, गुड इवनिंग मैडम।
0: जी। गुड इवनिंग, मेरी किनसे बात हो रही है?
1: मैं सतनखाई से मोनिका बोल रही हूँ।
0: जी मोनिका जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज आप इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दिल है तुम्हारा मूवी का टाइटल सॉन्ग दे दीजिए।
0: जी, और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगी?
1: सबसे पहले तो आप है
0: जी
1: आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ, मेरी भांजी दीपालक, दीपक दत्त सर, बुन्नी मैडम,
0: जी
1: और शादीपुर से सप्तमी कुंडू दीदी है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, विम्बलिया से शिप्रा है,
0: जी
1: बम्फला से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनीचंद जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं,
0: जी
1: पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और सुनने वाले सभी दोस्तों को सुनना चाहती हूँ।
0: जी तो ठीक है, कुछ ही देर
1: थैंक यू
0: में
1: मैडम।
0: जी, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, नमस्कार। मेरी किनसे बात हो रही
1: जी,
0: है?
1: नमस्कार। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी, आप कहाँ से हैं अनूप जी?
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर
0: जी
1: और डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, असम से ताल्लुका है।
0: जी, तो सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: मसाला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो। और
0: जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका दिन कैसा बीत रहा है?
1: जी, अभी तो क्या हुआ, मतलब हमारे यहाँ के सराउंडिंग जो है,
0: जी
1: क्लाइमेटिक जो चेंज है, थोड़ा बहुत बदल गया, क्योंकि
0: अच्छा।
1: बहुत नज़ारा बहुत अच्छे हो रहा है। क्योंकि मतलब हमारे जो जगत जननी दुर्गा माँ के आगमन हो रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसीलिए चारों ओर एक खुशियाँ खुशियाँ। और
0: जी,
1: या मतलब बहुत एक एनवायरनमेंट इतना डिवोशनल हो गया
0: जी,
1: और बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा।
0: जी, और हमें यहाँ से ही आपकी आवाज़ से महसूस हो रहा है कि वहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत होगा।
1: जी, एकदम
0: तो
1: सही
0: जी,
1: बात।
0: तो अब वक्त हो
1: ऐसे में
0: जी
1: आसाम है, आसाम जो है वो तो क्या बोलूँ, मतलब बाकी
0: जी
1: बहुत सुंदर नैसर्गिक जो दृश्य है वो
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छे है, मन लुभाने वाला है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आसाम की बात ही कुछ और है। चाय के बागान,
1: जी
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: बहुत
1: जी वो
0: खूबसूरत
1: तो
0: है।
1: स्पेशली है।
0: जी,
1: और
0: तो
1: बोलिए।
0: जी, तो आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा और हमें अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे ये जानें कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी, आज एक गाना सुना दीजिए। कितनी
0: जी
1: खूबसूरत ये तस्वीर
0: अरे
1: है,
0: वाह,
1: अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ओहो, एकदम भूल ही गया था, फिल्म का नाम है बेमिसाल।
0: जी, बहुत ही सुंदर
1: और
0: गीत आपने गाया वैसे।
1: जी,
0: जी
1: इतनी सुंदर नहीं
0: जी
1: गाया मेरे मेरा छोटे भाई अविनाश जी त्रिपुरा से,
0: जी
1: और प्रेम जी चक्रवर्ती, लोकेंद्र वर्मा जी,
0: जी
1: और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए।
0: जी
1: और आपने इतनी सुंदर क्या बोले, मतलब बहुत अच्छी बात कर रही है, तो इसीलिए आप डेडिकेशन
0: जी
1: आपके पर जाएगा।
0: जी तो ठीक है, हम आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मन चाहा गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं घर संसार फिल्म से। आवाजें हैं मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की। संगीत दिया है रवि ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है।

0: तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल सवेरे 7:30

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनिए हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। इस विषय पर जानकारी देंगी जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी। श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मुकेश का गाया एक गीत। फिल्म है पत्थर के सनम। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म मल्हार में। गीत इंदिवर का है, संगीतकार हैं रोशन।

हिमालय की गोद में। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है मुकेश ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन बनाई हैं कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, कल सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनिए। हेलो डॉक्टर, विषय रहेगा परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। इस विषय पर जानकारी देंगी जीबी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म बरसात की रात फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के शब्द हैं, संगीत से सजाया है रोशन ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मिलीजुली आवाज़ों में ताज महल फिल्म का एक गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति अर्थात डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपयुक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनवेंच नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए

0: सात सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन सात सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं थल सेना, नौसेना और वायु सेना अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।

0: अमेठी में बनी एके 203 असोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की

0: मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
0: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
2: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticizes those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elengovan bags bronze in women's pole vault. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said, Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allow India to grow and prosper. The government has said that 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana, DDU-GKY 2.0. The Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana is a centrally sponsored scheme providing placement links

0: पांच में स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टीके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
2: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय

0: हैज रिपोर्ट।
1: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: द इंडियन टीम इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन स्क्वॉश। शबाब अनवर हैज मोर।
2: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2 11-5 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4 11-3 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11 11-8 11-3 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
0: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
2: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
0: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
2: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12 19-21 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16 16-21 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष के तहत पहले राउंड में भारत के हरि

0: और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razoor, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
0: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar.

0: हाजमोर।
1: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और सचिन कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
0: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samaye Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
2: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
0: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner and they ultimately went on to win the series 2-0.
0: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
0: It's another exciting day of the Asian Games 2026 with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashish Chaudhary, Tilutuma Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Achyanappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's shotput final, while Praveen Chitrawal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400-meter final in athletics with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400-meter final. And athletics action ends with the women's 1500-meter final with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton, with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2020.

0: 6. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

अभी आप फिल्म मधुमति का ये गीत सुन रहे थे। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। सलील चौधरी ने इस गीत की धुन बनाई थी और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। अब चलते चलते हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 34 तिथि तदनुसार 26 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 और 50 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।